नमस्कार, सुप्रभात। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। आज है बुधवार, शक संवत 1948 के श्रावण मास के सातवें तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 5:59 और 3 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिस्टर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू माओवादी कार्य

0: चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। खेती की बातें, आइए कृषि संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त करें। इस कार्यक्रम में जैव उर्वरक के प्रकार एवं महत्व, संकलन और वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का। पूर्व प्रसारित यह जानकारी है।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जैव उर्वरक की। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटाया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है। जी हाँ किसान भाइयों, इस कमी की पूर्ति के लिए जैव उर्वरक का फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैव उर्वरक हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन में स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, इसलिए मिट्टी में इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इनके कल्चर का उपयोग जैविक खादों के साथ मिलाकर किया जाता है, जिसे जैव उर्वरक भी कहते हैं। जैव उर्वरक मुख्यतः राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरम, फास्फेट और पोटाश, घुलनशील जीवाणु वगैरह होते हैं। ग्रामीण भाइयों, जैव उर्वरक अनेक प्रकार की मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता है, न ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी आती है। जीवाणु कल्चर को बीज या जैविक खादों के साथ मिलाकर मिट्टी में मिलाने पर खेत में इन जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम, एजोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और फास्फोरस के लिए फास्फेट, घुलनशील जीवाणु कल्चर का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मुख्यतः 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अति आवश्यक तत्व है। यह पौधों को 3 प्रकार से उपलब्ध होती है, रासायनिक खाद द्वारा, गोबर की खाद द्वारा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस घुलनशील जीवाणुओं द्वारा। ग्रामीण भाइयों, प्राकृतिक रूप से मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में और स्थिर फास्फोरस को उपलब्ध अवस्था में बदल देते हैं। जीवाणु खाद ऐसे ही जीवाणुओं का उत्पाद है जो पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि की उपलब्धता बढ़ाता है। जैव उर्वरकों में अगर हम राइजोबियम कल्चर की बात करें तो यह एक नमी धारक पदार्थ और जीवाणु का मिश्रण है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग दलहनी फसलों में करते हैं। राइजोबियम एक गतिशील जीवाणु होता है। किसान भाइयों, राइजोबियम कल्चर का उपयोग दलहनी फसलों में 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से किया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी और बीज के उपचार के लिए भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, सेम और अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है। राइजोबियम जीवाणु के प्रयोग से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इसके प्रयोग से फसल की उपज 15-20% की वृद्धि होती है। राइजोबियम के प्रयोग से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। इन फसलों के बाद बोई जाने वाली फसलों में भी भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक होने से पैदावार अधिक मिलती है। किसान भाइयों, अब बातें एजिटोबैक्टर की। एजिटोबैक्टर मृदा में पाए

0: रहने वाला एक मृत जीवी जीवाणु है जो कि अधलनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इसका उपयोग मुख्यतः धान एवं गेहूं की फसलों में करते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी में 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर हो जाती है। एजियोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी के उपचार, रोपाई और बीजों के उपचार के लिए भी किया जाता है। किसान भाइयों, अब बातें एसिटोबैक्टर की। एसिटोबैक्टर यह जीवाणु गन्ने की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। एसिटोबैक्टर फसलों और पौधों की जड़ों के आसपास विखंडित होकर भूमि की नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलकर पौधों तक पहुंचाते हैं। एसिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी एवं बीज उपचार के लिए किया जाता है। यह गन्ने और चुकंदर की फसल में उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उसमें शर्करा की मात्रा को भी बढ़ाता है। जी हाँ किसान भाइयों, जैव उर्वरकों का भंडारण हमेशा ठंडे स्थान पर करें और इसे सूर्य की रोशनी से बचाकर रखें। इसे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से अलग रखें। इसका प्रयोग पैकेट पर अंकित तिथि से पहले करें। जैव उर्वरकों का प्रयोग विशिष्ट फसल के लिए होता है, इसलिए फसल के हिसाब से ही जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, कार्यक्रम में ये हुई बातें जैव उर्वरक की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे जैव उर्वरक के प्रकार एवं महत्व पर कृषि संबंधी कुछ जानकारी खेती की बातें कार्यक्रम के तहत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

रेगिस्तान पर रेत के ऊपर जब तेज़ धूप पड़ती है तो वहाँ जल का आभास होता है और पानी की आस में प्यासे वहाँ पहुँचते हैं, तब वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वह मात्र छलावा मिथ्या भ्रम है और इसके सिवा कुछ भी नहीं, और यही मृग तृष्णा है। जीवन में हम सभी किसी न किसी आभास या मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं और कल्पनाओं में खोए रहते हैं, उस भ्रमजाल में उलझे रहते हैं जो है ही नहीं। जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में होता है और वह उसकी तलाश में जंगल जंगल भटकता है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढत बनमाही, ऐसे ही अज्ञानता मनुष्य को पथ से भटका देता है। हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, इस जीवन का सदुपयोग कैसे करें, इसकी तलाश में लोग पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, जबकि स्वयं के पास ही बहुत कुछ है करने के लिए। भ्रम जाल में उलझा मनुष्य भटकता रहता है। भ्रम की माया मोह बंधन के कारण उचित रास्ता नहीं मिल पाता है। भ्रम की स्थिति में सुख चैन सब लुट जाता है। मनुष्य उस चीज की तलाश में लगा रहता है जो वास्तव में है ही नहीं, या फिर जिसे पाना संभव ही नहीं। पानी से भरे परात में चांद का प्रतिबिंब चांद होने का भ्रम है, क्योंकि वह हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता है। विवेकशील व्यक्ति इसे समझते हैं, किंतु अज्ञानी इसे पकड़ने में अपना समय और शक्ति व्यर्थ में गंवा देते हैं। लालसा, असंतुष्टि और तृप्ति ही व्यक्ति को भ्रमित करते हैं और इस मृग मारीचिका के पीछे पीछे वह भागता रहता है ता उम्र, अपने जीवन के अमूल्य पलों को गंवा देता है और फिर पछताता है। लेकिन जिनके आँखों को भ्रम जाल हट जाता है वह अपना जीवन सार्थक कर लेता है, साथ ही अन्य लोगों का भी वह कल्याण करता है। जैसे चंदन वृक्ष के आसपास अन्य भी सुवासित होते रहते हैं, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो विवेकशील होते हैं अपने आसपास के लोगों को भी सही रास्ता दिखाते रहते हैं। जिन्हें अंत तक आभासी के भ्रम से मोह भंग नहीं हो पाता है, वो प्यासे हिरण की भांति मृग मारीचिका में फंसकर हताश निराश प्यास की तड़प से मर जाते हैं, और यह दुखद है, चिंतन का विषय है। मनुष्य जीवन अनमोल है, ईश्वर ने उसे बुद्धि दी है ताकि वह सोच समझ सके और अपने जीवन का सदुपयोग कर सके, साथ ही साथ प्राणियों जीव जंतुओं का भी पोषण संरक्षण करता रहे। इसलिए अज्ञानता के

अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। व्यर्थ की तलाश में अस्थिरता परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। बुद्ध कहते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे कोई छीन नहीं सकता है।

मृग तृष्णा। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आलेख और वाचन स्वर था निर्मला तिवारी का। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में आइए सुनते हैं अब कुछ भजन।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए अब आपको स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बच्चों में निमोनिया इस बीमारी पर जानकारी दिलवाएं। भेंट वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर नरेश भगत और बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: छोटे छोटे बच्चे हमारे आने वाले भारत के भविष्य हैं और इन्हीं छोटे छोटे बच्चों पर भारत की तरक्की निर्भर करती है। और यह छोटे बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, खुश रहेंगे तो आगे चलकर भारत की एक अच्छी तस्वीर उकेरेंगे और भारत विश्व में एक अलग पहचान बनाएगा। तो बच्चे हमारे स्वस्थ रहे, निरोगी रहें, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा ही बीमारी है जो नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, वो है निमोनिया। निमोनिया क्यों हो जाता है, क्या कारण है और हमारे माता पिता किस प्रकार सजग हो कि जैसे ही मालूम पड़े कि हमारा बच्चा निमोनिया से ग्रसित होने वाला है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उपचार शुरू कर दें और साथ साथ हम सावधानियां किस प्रकार रखें। बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर नरेश भगत।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, स्वागत है। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे में ये बीमारी आम तौर पर देखी जाती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो निमोनिया का भी शिकार हो जाता है। तो निमोनिया होने का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है और लक्षण हम किस प्रकार देखकर पहचान पाए?
2: बॉडी को स्टडी के लिए हम लोग डिफरेंट अनेक सिस्टम में बांटे हुए हैं। जैसे ऊपर में जो भेजा है ब्रेन है और नर्वस सिस्टम में आता है, उसके बाद नाक से शुरू होता है एक सिस्टम, फेफड़ा में ख़त्म होता है और रिस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, मुंह से ख़त्म होकर एनस तक जो जाता है वो एक एलिमेंट्री कैनाल है, छाती में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके बाद हड्डी और जो मसल का जो स्टडी करने के लिए जो बांटा गया है सिस्टम वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में, क्योंकि ये हमारा सिस्टम एनवायरनमेंट से खुला हुआ रहता है, हवा सांस में हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इस तरह से हवा लेते हैं उस क्रम में इन्फेक्शन जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसे भी हमारा एटमोसफेयर में जो हवा में है उसमें डस्ट है, बैक्टीरिया है, स्पोर्स है, वो सब इन्फेक्शन का कारण बनता है, सांस में चला जाता है। तो निमोनिया का सबसे बड़ा कारण हम लोग मानते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर का इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्वेजन होता है वही इन्फेक्शन है। तो निमोनिया भी एक इन्फेक्शन से होने वाला बीमारी है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रमुख बीमारी है, श्वसन तंत्र का प्रमुख बीमारी है। इस बीमारी में फेफड़ा में सूजन आ जाता है, फेफड़ा लाल हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और जो फेफड़ा का जो मेन अंग जो काम करता है, जहाँ हवा का जो आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, वहाँ पर पस भर जाता है और उसमें पानी भर जाता है, जिसके चलते जो फेफड़ा का जो मेन काम है गैसों का एक्सचेंज करना, उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। बहुत सेवियर होने पर और भी लक्षण हैं, जैसे इसका मेन लक्षण है हमारा खांसी, बुखार, तेज सांस चलना, दम फूलना। अगर मरीज को तेज सांस के साथ में दम भी फूल रहा है या नीला हो जा रहा है ओट या शरीर, तो इसको तुरंत मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है और तो मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है। निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है बच्चों में। अभी भी हमारे यहाँ जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें एक बहुत बड़ा इसका योगदान है।
1: जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत वो निमोनिया से भी ग्रसित हो जाता है, तो इसका उपचार कैसे किया जाता है?
2: निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है लेकिन सही इलाज से पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जन्म से हम लोग 28 दिन का बच्चे को नियोडेट बोलते हैं, उस समय सांस का रेट होता है 40 से 60 होता है। अगर 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है बच्चा तो संभावित माना जाए कि बच्चा का चेस्ट में इन्फेक्शन है। इसको हम लोग डेंजर साइन के रूप में रहते हैं, तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। और छोटे बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल होता है, जनरली निमोनिया का जो कारण होता है ज़्यादातर वायरल होता है, लेकिन बैक्टीरिया वो अपने आप ठीक होता है, वायरल 2 to 7 days में बॉडी अपने रिस्पॉन्ड करता है और उसको करेक्ट कर लेता है। लेकिन सबसे दिक्कत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो होने वाली बीमारी है उसके लिए छोटे बच्चों में जनरली एच इन्फ्लुएंजा और स्टैफिलोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, निमोनिया का कारण ये है बैक्टीरिया में। और 1 साल के बाद जो इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हम लोग निमोकोकस बोलते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो छोटे बच्चों में जो होता है एच इन्फ्लुएंजा और स्टैफिलोकोकस, उसके लिए हम लोग एम्पिसिलिन साथ में जेंटामाइसिन या क्लोक्सासिलिन के साथ मिला हुआ, मैंने पेनिसिलिन ग्रुप और जेंटामाइसिन के साथ मिला हुआ हम लोग दवा देते हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। सही इलाज सही समय पर होने से निमोनिया पूरी तरह से ठीक होने वाला और पूर्णतः ठीक हो जाता है
1: जी। और एक बार जब निमोनिया बच्चे को ठीक हो जाता है तो कितना संभावना है कि बार बार उसे हो, और हम इसका देख रेख कैसे करें? बचाव ही कहते हैं सबसे बड़ा उपाय है।
2: हाँ, आपने सही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम लोग कहते हैं। तो निमोनिया के बचाव के लिए फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है न्यूट्रिशन, पोषण भी अच्छी तरह होना चाहिए। पोषण से बॉडी का इम्यूनिटी बना रहता है, खासकर हमारे झारखंड में माल न्यूट्रिशन की ये समस्या है, जिसके चलते बच्चे का शरीर कमज़ोर रहता है और इम्यूनिटी कम रहता है, जिससे ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी घर कर जाता है। प्रिवेंशन के लिए टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। इसका एक टीका आया हुआ है निमोनिया का, इसको हम लोग निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बोलते हैं, सिनफ्लोरिक्स या प्रिवेनार के नाम से बाजार में उपलब्ध है। यद्यपि ये महंगा है, कि अगर जो लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं। हमारे सरकारी सिस्टम में जो अनिवार्य टीके हैं वही उपलब्ध होते हैं, ये ऑप्शनल टीका में आता है, इसलिए उपलब्ध नहीं है। अन्य भी उपायों से हम निमोनिया का बचाव कर सकते हैं। जैसे टीकाकरण के दौरान 9 महीना से 1 साल के बच्चे को हम लोग विटामिन ए का सिरप देते हैं। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। 1 साल में चालू करने के बाद हर 6-6 महीने में बच्चे को विटामिन ए का सिरप पिलाया जाता है, जो 5 साल तक पिलाया जाता है। टोटल 9 डोज पिलाया जाता है। विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं, जिससे बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है और बार बार जो निमोनिया डायरिया या इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है। इसलिए टीकाकरण में विटामिन ए का सिरप अवश्य पिलाएं। खान पान में भी ऐसी चीज़ों का समावेश करें जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो।
1: खान पान में हम किस तरह के फलों का सेवन करें और घर में जो अनाज है उसका हम बच्चों को सेवन कराएं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो खाने में बहुत झिकझिक करते हैं।
2: आपने सही कहा, बच्चे आजकल जो फास्ट फूड कल्चर आ गया है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जो ये स्वादिष्ट तो है लेकिन न्यूट्रिटिव नहीं रहता है। बच्चों को सीजनल फ्रूट्स दिया जाए, खासकर विटामिन ए की जो मात्रा मिलती है हमारे लाल पीले फलों में मिलती है, जैसे आम हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, इस समय ज़्यादा मिलता है। तो इन फलों का समावेश जरूरी करना है। गाजर का उसको सलाद बना के दिया जा सकता है, हलवा बना के दिया जा सकता है। साथ में हरी हरी सब्जियों का समावेश किया जाए जिसमें विटामिन ए की मात्रा रहती है।
1: और सबसे बड़ी बात कि हमारे माता पिता को सजग होने की आवश्यकता है। बच्चे को यदि हम सही से देख रेख करते हैं, खासकर जो हमारा नवजात शिशु है उसको देख रेख की आवश्यकता है। और जब ऋतु परिवर्तन होता है और ख़ासकर हम ठंड के मौसम की बात करें, तो ये बीमारी ज़्यादा बच्चों को अपने गिरफ्त में लेती है।
2: हाँ, सही कहा, बच्चों का शरीर छोटा होता है, गर्मी कम बनता है। तो जैसा मैंने कहा कि 0 से 28 दिन का बच्चा को हम लोग न्यूनेट बोलते हैं, सांस 40 से 60 बार लेता है। ज़्यादा 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बच्चे को ठंडा से बचाने के लिए 3-4 लेयर गर्म कपड़ा पहनाएं, साथ में अगर कोई जगह रहते हैं दिन में तो उसको गोद में रखें, अपना बदन से सटा करें ताकि गर्मी मिले। हम लोग जब कम वजन वाले बच्चे या प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उसका हम लोग KMC कराते हैं, कंगारू मदर केयर कराते हैं। उसमें स्किन कंटैक्ट करा के बच्चे का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं। एक गर्म बच्चे को गर्म रखने का विधि है कंगारू मदर केयर, जिससे बच्चा गर्म रहता है, ठंड नहीं लगता है, जिसके चलते निमोनिया किसी पे बचाव का उपाय बनता है।
1: खान पान के भी ध्यान रखने की आवश्यकता, और खासकर जो बच्चा नवजात है तो माता अपने स्तनपान उसे ज़रूर कराएं। ये बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावार के लिए, और बच्चे को मानसिक रूप से विकास होगा, बच्चा का विकास सही होगा और बच्चा का बढ़ावार सही होगा और वो चपल होगा, चंचल होगा, और यही बच्चे आगे चलकर देश का निर्माण करेंगे।
2: माँ का दूध जो पहला दूध पिलाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कहते हैं अनऑथराइज्ड रूप से, क्योंकि विटामिन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए विटामिन ए की मात्रा रहती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है माँ का पहला दूध को बच्चे को अवश्य पिलाएं, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जो जैसे मैंने बताया कि विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं, इन्फेक्शन से रोकने में मदद मिलेगी।
1: तो सभी माताओं और बहनों से हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों को देख रेख ठीक से करें। यदि बच्चा छोटा है तो उसे स्तनपान कराएं, और बाहर की चीज़ें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें। बच्चे ज़रूर ललायित होते हैं, लेकिन बच्चों के मांग पर आप नहीं जाएं। बच्चे को घर का बना हुआ खाना खिलाइए और फल का सेवन बच्चे को ज़रूर खिलाइए। बच्चे आपके तंदुरुस्त रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ। डॉक्टर नरेश भगत, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बच्चों में निमोनिया, अभी आप डॉक्टर नरेश भगत से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या रॉय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, सी फेयरर, वर्कफोर्स रिपोर्ट

0: in their core also added a silver to India's medals tally in women's 69 kilogram weightlifting event. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचारों के बाद स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं शेष कार्यक्रमों की।

अभी से कुछ देर बाद यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे पलाश कार्यक्रम के तहत लोकगीत। गायिका होंगे शारदा सिन्हा। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता में आप सुनेंगे हरिहरण को 7:45 पर। सुबह 8 हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए। हिंदी अंग्रेजी समाचार सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रादेशिक समाचार सुबह 8:30 आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे। सुबह 8:45 पर हम अपने स्टूडियो से प्रस्तुत करेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन के तहत कुछ फिल्में गाने। जोहार पलामू, हमारे यह कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:00। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता होंगे श्री प्रशांत गौरव। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1338 आज हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30। हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए एक बार फिर से हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में सुबह 10:00।

सेल्यूलाइट के सितारे सुनेंगे आप विविध भारती के तहत आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से 10:10 पर। 11 बजे रंग तरंग और 12 बजे सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे पुनः आप सुन पाएंगे हिंदी अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार। सुरीला सफर विविध भारती के तहत सुनेंगे आप यह कार्यक्रम 1:20 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 2 बजे पुनः अंग्रेजी समाचार और हिंदी समाचार सुन पाएंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सदाबहार नगमों का आप आनंद लेंगे दोपहर 2:30 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सखी सहेली कार्यक्रम सुनेंगे आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से दोपहर 3 बजे और प्रादेशिक समाचार 4 बजे सुनेंगे आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से और विविध भारती के तहत सुनेंगे आज के मेहमान 4:02 से आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5 बजे 5:02 पर सुनेंगे आप विविध भारती के तहत छाया गीत और 5 बजे सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार। 5:30 बजे हम अपने स्टूडियो से आपको जानकारी देंगे एक बार फिर से सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों की।

शाम 5:35 पर घर आंगन कार्यक्रम के तहत चर्चा की जाएगी अरुणा आसफ अली के जीवन परिचय पर और बचत की डालें आप आदत, इस पर भी चर्चा होगी। मीना चौरसिया की वार्ता सुनेंगे आप, कुटीर उद्योग से भविष्य निर्माण। प्रादेशिक समाचार 6:02 से खेती बारी कार्यक्रम के तहत चर्चा होगी मूंगफली की खेती में प्रबंधन पर, कम पूंजी में सागों की खेती, इस पर भी चर्चा की जाएगी और एक केंचुआ पालक सुरेश प्रजापति से आप भेंट वार्ता सुनेंगे। जोरकट पलामू के सुरेश प्रसाद प्रजापति बातचीत करेंगे संतोष कुमार। कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा 6:30 से प्रस्तुत किया जाएगा। चर्चा होगी इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्र पर आज की बात होगी। दीदी बाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और मृदा अपरदन से बचाव जल संरक्षण पर ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे आप। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ, और बातचीत करेंगे संतोष कुमार। मौसम विभाग से प्राप्त मौसम की जानकारी और पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव जानेंगे आप। आज की नसीहत प्राकृतिक खेती पर 6:55 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र में। प्रादेशिक समाचार 7:00 और 7:10 पर सुनेंगे आप जिले में।

आजकल फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक रंग में सुनवाएंगे आपको कुछ फिल्मी गाने शाम 7:15 पर और कल्याणी कार्यक्रम सुनेंगे आप 7:45 पर। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता सुन पाएंगे आप, अस्थमा कारण और उपचार, डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय से ली गई भेंटवार्ता। 8:00 आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, 8:15 पर सुनवाएंगे आपको अपने स्टूडियो से चित्रपट से के तहत फिल्मी गाने और एक बार पुनः शामिल होंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए। 9:30 सुनेंगे आप छाया गीत कार्यक्रम विविध भारती के तहत आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और 11:00 पूरा हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में। सभा समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। तो यह थी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित। मित्रों, समय हो चला है लोकगीतों के कार्यक्रम पलाश का, तो आइए सुनते हैं कुछ लोकगीत।

शारदा सिन्हा के गाए इसी लोकगीत के साथ ही पलाश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता में आइए सुनते हैं हरिहरण को।

डॉक्टर बशीर बद्र की गज़ल को स्वर दे रहे थे हरिहरण। इसी के साथ ही सुगम संगीत का स्वर सरता कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए।

0: के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद

0: यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास

0: दास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है POK में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक

0: carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq, and Gulveer Singh becomes the first Indian to win silver medal in the men's 10,000-meter race at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: तो हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30 हुए हैं। आप सुनेंगे थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार, उससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम।
2: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
3: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
4: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी मिसर बेसरा धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार। झारखंड में एसआईआर के तहत मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज। अब तक 99.67% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा। झारखंड हाईकोर्ट ने एनटीए को नीट पुनर्परीक्षा में ओएमआर शीट के मुकाबले रिजल्ट में कम अंक देने के मामले में मूल ओएमआर शीट बंद लिफाफे में जमा करने का दिया निर्देश। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने गहरे दबाव के असर से पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय। राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी। और 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम तमिलनाडु रवाना। झारखंड का पहला मुकाबला 2 अगस्त को पंजाब के साथ। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ रुपए का इनामी शीर्ष माओवादी मिसर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ 15 लाख रुपए के इनामी रीजनल कमेटी के सदस्य मेहनत उर्फ मोच्छू, माओवादी सदस्य गौरव तथा 2 ग्रामीणों को भी पकड़ा गया। कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई पर पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड में माओवादियों के खिलाफ कल का दिन काफी अहम रहा। एक और 16 नक्सलियों ने पुलिस मुख्यालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया तो देर रात धनबाद गिरिडीह सीमा पर गुप्त सूचना के आधार पर 1 करोड़ इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां तीनों को गुप्त स्थान पर उनसे पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिसिर बेसरा का सुरक्षा कवच कहा जाने वाला बॉडीगार्ड शनिचरवा ने कल झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। अब केवल असीम मंडल और उसके 5 सहयोगी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
0: झारखंड में एसआईआर के तहत मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता निर्धारित समय तक फॉर्म जमा नहीं करेंगे उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा। राज्य में अब तक 99.67% इनॉमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, जबकि 31 विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया है। जेपीएससी भर्ती परीक्षा मामले में सीआईडी ने कल जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ने एल ख्यांगते का पासपोर्ट जब्त कर लिया है ताकि वे बिना अनुमति देश से बाहर न जा सकें। सीआईडी ने एल ख्यांगते को आज फिर से पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नीट के पुनर्परीक्षा में ओएमआर शीट से जुड़ी गड़बड़ी के मामले में अभ्यर्थी की याचिका पर कल सुनवाई की। अदालत ने एनटीए को मूल ओएमआर शीट को सील बंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की। गौरतलब है कि प्रार्थी को वेबसाइट में अपलोड की गई ओएमआर शीट में 660 अंक मिले हैं, जबकि रिजल्ट में सिर्फ 116 अंक ही मिले हैं। राज्य के एससी एसटी ओबीसी वर्ग के गरीब मेधावी विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कल्याण विभाग और वीआईटी मेसरा की यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बीच कल एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत झारखंड सरकार अगले 10 वर्षों में 79.40 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विश्व प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेले को लेकर बाबा धाम और दुमका का बासुकीनाथ धाम पूरी तरह तैयार है। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर आज मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू दुम्मा बॉर्डर पर राजकीय श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कल से 28 अगस्त तक लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से 109 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में शिवलिंग पर जलार्पण करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts। और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों की उपस्थिति में कल चौकीदार परेड का आयोजन किया गया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने कहा कि सभी चौकीदारों को निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ दायित्वों का निर्वहन करने तथा जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया।
2: चौकीदारी परेड का आयोजन हम लोग अनुमंडल में किए। इसका मेन उद्देश्य था कार्य क्षेत्र है जो बीट बटा हुआ है, उसमें उनका कर्तव्य क्या है उनके बारे में जानकारी प्राप्त है, क्या काम करना उसके संबंध में उन लोगों को बताया गया, अपराध से संबंधित अपराधियों पे प्रभावी नियंत्रण कैसे किया जाए। बॉर्डर इलाके के चौकीदार हैं उनको भी एक्टिव किए कि आप अपने इलाके में नजर बना के रखिए कि कहीं कोई बैड एलिमेंट अगर मूवमेंट करते हैं तो उसकी सूचना हम लोग तक पहुँचाइए।
0: गिरिडीह पुलिस ने जिला मुख्यालय में मछली व्यवसायी से छिनतई करने वाले 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉ. विमल कुमार ने बताया कि सभी अपराधियों के विरुद्ध गिरिडीह जिले के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है।
3: 23 जुलाई को पचम्बा थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल सवार द्वारा 2,07,000 रुपए छीनने की बात सामने आई। इस पे कार्रवाई करते 5 लोगों की अभी गिरफ्तारी की है और देसी कट्टा 2, जिंदा गोली 3 और जो बुलेट मोटरसाइकिल बिना नंबर वो भी जब्त किया गया है।
0: सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने 7,59,650 रुपए नकद और 20 पुड़िया मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने गहरे दबाव के असर से पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय है, इससे रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए 18 सदस्यीय झारखंड की टीम कल तमिलनाडु के लिए रवाना हुई। झारखंड का पहला मुकाबला 2 अगस्त को पंजाब के साथ होगा। हॉकी झारखंड के महासचिव
4: जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2026 कोयंबटूर में
0: का हौसला बढ़ाया।
4: जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2026 कोयंबटूर में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जो प्रतियोगिता है जिसमें झारखंड का पहला मैच 2 तारीख को है, जिसके लिए झारखंड टीम की घोषणा की गई और टीम की किट का वितरण किया गया और इस प्रतियोगिता के लिए हम लोगों ने 18 खिलाड़ी चयनित किए हैं, झारखंड टीम से खेलेंगे।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसर बेसरा की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से 8 घंटे सीआईडी ने की पूछताछ, पासपोर्ट जब्त, एजेंसी ने आज फिर बुलाया। प्रभात खबर की सुर्खी है, टाटा मोटर्स और राज्य सरकार के बीच करार, युवाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण। हिंदुस्तान ने धनबाद में कोयला कारोबारियों के 150 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की खबर को पहले पन्ने पर

जगह दी है। और दैनिक जागरण ने पेपर लीक रोधी बिल पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच बहस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार, झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी मिसर बेसरा धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार। झारखंड में SIR के तहत मतदाताओं से इनुमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज। अब तक 99.67% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा। झारखंड हाईकोर्ट ने NTA को नीट पुनर्परीक्षा में OMR शीट के मुकाबले रिजल्ट में कम अंक देने के मामले में मूल OMR शीट बंद लिफाफे में जमा करने का दिया निर्देश। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने गहरे दबाव के असर से पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय। राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम तमिलनाडु रवाना। झारखंड का पहला मुकाबला 2 अगस्त को पंजाब के साथ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: J'entends.
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता मित्रों, समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का। गीत गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले तमाम साथियों का स्वागत है। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त निर्मला का नमस्कार और साथ ही आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत इस गाने के साथ।

लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना अभी आप सुन रहे थे, पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ और सुधीर फड़के का संगीतबद्ध किया हुआ, फिल्म थी भाभी की चूड़ियाँ। और आइए आप सुनवाते हैं कुछ ऐसे गाने जो दिग्गज कॉमेडियन जॉनी वॉकर की फिल्मों से हमने लिए हैं। आज है उनकी पुण्यतिथि, हम उन्हें याद कर रहे हैं और महान कलाकार को हम याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए सुनवाते हैं मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गाना।

कहा जाता है कि जॉनी वॉकर ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में बस कंडक्टर के रूप में किया था। वे यात्रियों को हंसाने के लिए मज़ेदार अंदाज में टिकट बांटा करते थे और एक बार अभिनेता बलराज साहनी ने उनकी इस प्रतिभा को देखा और गुरुदत्त साहब से मिलवाया। गुरुदत्त ने जॉनी से एक शराबी की एक्टिंग करने को कहा और जॉनी की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि गुरुदत्त ने तुरंत उन्हें अपनी फिल्म बाजी में साइन कर लिया। और मज़ेदार बात यह है कि गुरुदत्त ने ही उनके नाम को मशहूर व्हिस्की ब्रांड जॉनी वॉकर से प्रेरित होकर रखा था। हालांकि जॉनी ने असल ज़िंदगी में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था और ये तो उनकी अभिनय क्षमता थी कि वो उस किरदार में डूब जाया करते थे। चलिए सुनवाते हैं बाजी फिल्म का।

गीता दत्त और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजी में। गीत के बोल साहिर के थे, धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने। दोस्तों, जॉनी वॉकर ने ज़्यादातर फिल्मों में शराबी के किरदार ही निभाए। उनकी नशेली अदा, हाव भाव दर्शकों को खूब हंसाते थे और पसंद आते थे, लेकिन सेट पर लोग हैरान रह जाते थे कि जॉनी असल जिंदगी में शराब को हाथ भी नहीं लगाते। और यह उनकी प्रतिभा ही थी दोस्तों कि बिना शराब पिए वे नशे में धुत किरदार को जीवंत कर देते थे। जी हाँ,

0: और कहा जाता है कि उन्होंने बाद में कॉमेडी में अश्लीलता पढ़ने के कारण अभिनय छोड़ दिया था, लेकिन सन 1998 में कमल हासन और गुलजार के आग्रह पर उन्होंने फिल्म चाची 420 में एक छोटा सा रोल निभाया और इस फिल्म में उनके छोटे से किरदार ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी सादगी और हंसी मजाक ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। तो ऐसे थे हमारे जॉनी वॉकर साहब, और इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, और अब समय हो चला है जोहार पलामू कार्यक्रम का, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: पलामू।

जोहार नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर हैं, क्योंकि वे हमारे जीवन में नए ज्ञान संस्कारों का सृजन करते हैं। वे विष्णु तुल्य हैं क्योंकि ज्ञान की रक्षा करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। वे महेश्वर यानी शिव के तुल्य हैं क्योंकि वो हमारे भीतर के अज्ञान बुराइयों का नाश करते हैं। गुरु ही प्रत्यक्ष रूप से परम ब्रह्म यानी ईश्वर तुल्य हैं। ऐसे पूजनीय गुरु को हम बार बार वंदन करते हैं। गुरु पूर्णिमा को महान चारों वेदों के रचयिता वेद व्यास के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है और यह दिन गुरु तुल्य सभी बड़ों को समर्पित है। हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है और वो हमें सही गलत का ज्ञान बोध कराते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। इसलिए उन्हें सम्माननीय पूजनीय कहा जाता है और उनका स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को यह मनाया जाता है। इस दिन गुरु पूजा का भी विधान है और उनके प्रति आभार सम्मान प्रकट किया जाता है। जी दोस्तों, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति अद्भुत है और विश्व भर में प्रसिद्ध है। हम वसुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, विश्व के लिए मंगल कामना करते हैं। प्रत्येक जीव जंतु प्रकृति की सुरक्षा हेतु हम संकल्पित होते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, प्रकृति आराधना का संदेश दिया जिससे हम संयमित रहें और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहें। सौहार्द सद्भावना भाईचारा का संदेश देते हैं हमारे पर्व और तभी तो हमारा देश महान है, विश्व भर में प्रसिद्ध है और गर्व से हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं जोहार पलामू कार्यक्रम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और आज आपके साथ इस सफर में है आपकी दोस्त निर्मला। चलिए बातें कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार हमारे राज्य में मानसून की सक्रियता तो बनी हुई है, और पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने और कई जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है, और इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। कल यानी 30 जुलाई को कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इसलिए मौसम को देखकर ही आप लोग बाहर जाएं, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। किसान और अन्य लोग जब भी बाहर निकलें, वो मौसम के मिजाज को देख लें, सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो आप भी इसका ध्यान रखें, और यदि तेज़ मूसलाधार वर्षा चमक गरज हो रही है तो बाहर मत जाइए। हल्की बूंदाबांदी है तो फिर भींगने का तो आनंद ही कुछ और हो सकता है, क्योंकि हल्की बारिश में भींगना, गीत के साथ झूला झूलना, कागज़ की कश्ती, ये सबका एक अलग ही आनंद है। सामूहिक नृत्य गीत गवनई वर्षा के माहौल को और भी खुशनुमा बना देते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब आपको एक भीगा भीगा सा गाना सुनवा देते हैं।

दोस्तों चलिए पलटते हैं अब इतिहास के पन्ने और आज की तारीख में दर्ज कुछ प्रमुख घटनाओं पर डालते हैं एक नज़र। 29 जुलाई के इतिहास में बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं। सन 1981 में वेल्स के राजकुमार चार्ल्स और लेडी डाइना स्पेनिश का विवाह लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में हुआ था। मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था आज ही की तारीख को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी आज ही की तारीख को। और आज ही की तारीख को सन 1836 में पेरिस में फ्रांस के लिए लड़ने वालों की याद में बने ऑर्किड डी ट्रायम्फ का उद्घाटन हुआ था। और इसके साथ ही आज की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को इसे मनाया जाता है। और इसके साथ ही अन्य और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन चूंकि हमारे कार्यक्रम का समय सीमित होता है मित्रों, इसलिए हम कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में ही आपको बता पाते हैं। और चलिए ले चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर।

दोस्तों आइए अब बातें कर लेते हैं सेहत की। बारिश के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी हम बारिश में कभी ना कभी तो भीग ही जाते हैं, और ऐसे में सर्दी, जुखाम, बुखार, ये तो आम समस्याएं हैं जो लोगों के साथ बनी रहती हैं। इसके साथ ही वर्षा के मौसम में जो पीने का पानी है उसमें भी कई तरह के प्रदूषण होते हैं। यदि हम उसका ध्यान ना रखें, उसे उबाल कर ना पिएं, तो कई तरह की आंतरिक बीमारियां हो जाती हैं, यानी कि पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इसके साथ ही ये जो जलवायु है उसमें कई तरह के वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगल, तो ये सब हमारी त्वचा को भी प्रभावित करते हैं और त्वचा संबंधी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। इसके साथ ही इस मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है, इससे भी मच्छर जनित बीमारियां, मक्खी जनित बीमारियां भी शरीर को लग जाते हैं। इसलिए इस मौसम में स्वास्थ्य का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। अपने साथ साथ ये मैं महिलाओं के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वो तो घर की धुरी होती हैं, खान पान व्यवस्था सब उन्हीं के हाथ में होता है, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार वालों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन वो हमेशा ताज़ा ही दें खाने के लिए, और ख़ुद भी ताज़ा ही भोजन ग्रहण करें, साफ़ सुथरा और स्वच्छता के साथ बनाया हुआ ढका हुआ भोज्य पदार्थ ग्रहण करें। पानी को संभव हो तो उबाल कर ही पीना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जो सीधे नदी से पानी का उपयोग करते हैं, कुएं से करते हैं, वैसे में उन्हें उबालकर पानी पीना अच्छा होता है। साथ में कई तरह की जो त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं, इसके लिए जब भी आप बारिश में भीग जाएं, तो बाहर से आने के बाद तुरंत अपने शरीर को स्वच्छ पानी से एक बार स्नान करें, फिर पूरे शरीर को साफ कपड़े से पोंछें और उसे पूरी तरीके से सुखाकर साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर यदि नमी बनी रहती है शरीर में तो फिर फंगल शिकायतें हो जाती हैं, शरीर में कई तरह के त्वचा के संक्रमण हो जाते हैं, खुजली पैदा हो जाती है, दाने निकल आते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं और कई तरह की परेशानियां सामने आ जाती हैं। भीगने के बाद इस मौसम में सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, ऐसे में आपको तरल पेय पदार्थ, गर्म पदार्थ लेना चाहिए, गर्म पेय लेना चाहिए, सूप पी सकते हैं आप, आपके पसंदीदा जो भी पेय पदार्थ हैं आप उसे ले सकते हैं और काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तुलसी का काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है, साथ ही अदरक, इस मौसम में तो इसका आनंद लिया ही जा सकता है और लोग लेते भी हैं। इसके साथ ही साथ जो आंतरिक परेशानियाँ होती हैं पेट संबंधी, वो खाद्य दूषित खाद्य पदार्थों से होती हैं, दूषित जल के प्रभाव से होती हैं, तो हमें ये ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि बाहर का खुला हुआ भोजन बच्चों को ना खाने दें और ना ही स्वयं खाएं, और बड़े बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें इस मौसम में ख़ास तौर पर। और खाद्य पदार्थ यदि हम ताज़ा लेते हैं, घर का बना हुआ लेते हैं, तो इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में जब हम बाहर का खाद्य पदार्थ लेते हैं जिसमें मक्खियाँ बैठ जाती हैं और धूल उसमें कई तरह के बैक्टीरिया हो जाते हैं, अगर वो बासी है तो फिर हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस मौसम का आप आनंद लें, तो फिर ये मौसम हर मौसम की तरह ही काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो फिर हमें भोजन के लिए अनाज कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि हर ऋतु का अपना एक अलग महत्व है और उसे समय पर होना ही चाहिए। चलिए एक बार फिर लिए चलते हैं आपको अब गीत संगीत की ओर।

0: चलते चलते हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो बाघों के संरक्षण के प्रति, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जीव जंतु बचेंगे तभी ये धरती होगी, हम होंगे और ये पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बने रहेगा। इसके साथ ही आज JRD टाटा का को भी हम याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं, और अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई हमसे कह रही है कि इस कार्यक्रम से अलविदा लेने का समय आ चुका है। तो दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर निर्मला तिवारी का था, संयोजनकर्ता थे श्री प्रशांत गौरव। और आइए प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
0: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
0: जी, श्रोता, हुए मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
0: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
2: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-440-5559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT के पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
2: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ?
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन,
1: हाँ
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ।
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: हाँ? देखो सामने दीवार पर देखो। अरे वाह जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ। हाँ शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: Itnidin on simehnet karalikin. Kaamia viinimilti. Ja selittää kävi mansilpaattore. Let's go. Mene jalka. Let's go. Tattava. यहां तक तो ठीक है, अब देखता हूं कि क्या होता है।
1: विलियम?
2: हाँ जॉन।
1: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो।
2: करता हूं।
1: हाँ, और सुनो,
2: हाँ,
1: आप कमरे में अंधेरा करो।
2: एक मिनट।
1: हाँ,
2: मैं ये लाइट बंद कर देता हूं।
1: हाँ ठीक है, और सुनो, स्क्रीन ऑन करो।
2: हाँ ठीक है।
3: अरे वाह जॉन,
1: हाँ
3: देखो सामने।
1: अरे हाँ,
3: क्या बात है।
1: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
3: हाँ जॉन,
1: हाँ
3: हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
1: हाँ
3: जॉन, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत
1: तुम्हें विलियम, बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए।
2: हाँ, आइए। इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर। हाँ, थोड़ा सा
3: इधर।
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन।
2: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश

0: किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमा 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया है और अमेरिकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। अकेले शिवसागर जिले से कल 7 और मौतें दर्ज की गयी। ऊपरी असम के प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों से बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इन्होंने स्कॉट्स काउंट में समय निकाला और ऑस्ट्रेलिया के कोई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ग्लासगो में चल रही स्पर्धाओं में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो अपने आदर्शों को अपने जीवन की शक्ति का स्रोत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्मस्थान पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बख्शी साहब को माय सीनियर, ही वाज माय सीनियर इन माय जॉब. आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वाज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर. शाकिर खान, शाकिर खान ने बख्शी साहब का इंटरव्यू लिया सुभाष जी के लिए. क्वेश्चन सुभाष ने पूछा था बख्शी साहब को कि बख्शी जी आपको कब लगता है कि आप फेल हो गए हो एज अ राइटर. ये सर मुझे जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि ये गाना मैंने सुना मुझे लगा ये बख्शी साहब ने लिखा है, मुझे लगा मैं फेल हो गया हूँ.
1: गजब.
0: क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट माई वॉइस हैज टू बी हिडन. अगर मेरी आवाज लग रही है आपको इस गाने में कि ये लफ्ज बख्शी साहब के हैं तो ये वो मेरा फेलियर है.
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है.
0: कैरेक्टर गाना नहीं लग रहा.
1: बहुत गहरी बात है.
0: इसलिए वो मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने. मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है. यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी. तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर
0: रो पड़े. तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए. गिवेंट एंड टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से. फिल्म रिलीज हो गई है तो क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया. तो कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर. दैट कैरेक्टर इज अनएडुकेटेड, शी कैनॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स. प्रोड्यूसर को बोला है सर लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस. तो वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले.
1: साउथ की फिल्म थी.
0: ही वॉन्ट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म. व्हाई यू वॉन्ट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दीज आर माई वर्ड, दीज नॉट द वर्ड ऑफ द कैरेक्टर. उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो ये वर्ड बोल ही नहीं सकती वो.
1: क्या
0: आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं. मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े.

0: क्या
1: एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्श साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला, बख्श साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे, रविंद्र टैगोर की फोटो
0: जी
1: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो, ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
0: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं,
1: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
0: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया।
1: अरे कमाल है वो तो,
0: वो कहानी बताइए।
1: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए सेकंड टाइम, पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहां से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को, तो वहां पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ, बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो, तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है, बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ, बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो, वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, हर गाना मालूम था, आप देखो क्या चमत्कार ईश्वर का। अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो, बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो, काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है, सुनाओ, सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ, और सुनाया। 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी साहब की, बोले तुम वापस मत जाओ, तो बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं है रहने के लिए बम्बई में, तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है, मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूँगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे
0: बोरीवली में,
1: हाँ पैसे भी नहीं लिए,
0: तो
1: जिंदगी भर मरते तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से।
0: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए, अब एक आसरा हो गया, यहाँ से स्ट्रगल किया जा सकता था। मैंने सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
1: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे दे सके, या स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो अपना फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को, बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे, यू अ वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम रोशन,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: 1956। रोशन साहब ने ऐसे ही बोला, अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। रोशन साहब कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सांता क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूंगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर, तो वहाँ चले गए और जबरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और बीएसटी बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तुमको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से सांता क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे, तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम, पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए, बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था,
0: पागल हो गया,
1: बरसात में क्यों आए तुम, इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
0: हाँ उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या,
1: हाँ तुम पागल हो क्या तुम। इसे सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था।
0: क्या बात है,
1: एकदम चौंक गया हुआ आदमी, उसको लगा कि सर ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ।
0: हाँ।
1: उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
0: वाह वाह वाह वाह, यहां से शुरू होता है
1: कि गाने क्यों जरूरी हैं।
0: जी
1: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता। हमारी इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
0: सोचिए कि शकील के नगमे थे तो उसमें बख्शी साहब को बीच में मौका मिला।
1: राजेश रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लफ्ज है, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
0: वाह वाह।
1: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ दो तीन हफ्ते लिए गाना लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शी साहब गाना लिखने में भूल गए, लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन।
0: कितनी
1: इतना बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
0: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का।
1: देवर द लास्ट फिल्म टुगेदर
0: जी।

0: ये अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: आई टोल्ड यू नो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजीत स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे। महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजीत स्टूडियो गए और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना, बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्मिस्तान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्मिस्तान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पहला लिया होगा सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया था निकाल साले को स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा गए रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहे इधर तुम, इसे मैं

पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर। भगवंत दादा के रूम में चले गए। कौन है भाई तुम, क्या कर रहे इधर तुम? इधर में फौजी है। घुस गए अंदर। भगवंत दादा के रूम में चले गए। कौन है भाई तुम, क्या कर रहे इधर तुम? इधर में फौजी

0: और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म मिली,
1: उनकी पहली हिट थी
0: जी,
1: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे। उससे पहले एक और हिट थी चांद सी महबूबा,
0: हाँ,
1: उसमें सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे लेकिन
0: एक दो गाने थे,
1: हाँ,
0: हिमालय की गोद में,
1: हाँ, लेकिन ये गाना बहुत चला था
0: जी,
1: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने आनंद बख्शी के थे जो चली थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
0: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले, सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट। उसके बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे और गाने लिख रहे हैं, वापस और गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के।
0: जमीन पे बैठ के कोई नखरा नहीं,
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज दो, रिजॉर्ट में भेज दो।
0: मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती हैं नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो, तुम लोग सब लड़ रहे हो, मैं तू इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख रहा
0: लेकर रहा हूँ। कोकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लिख रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशिएंट फॉर माय प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है वो मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन? मैं 50 अंतर लिख के देता हूँ क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क फॉर।
1: बहुत काम करते थे।
0: हाँ,
1: मेहनत बहुत।
0: तुमने 3 मांगा ना, ये 30 लेके जा भाई।
1: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई है जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3, 4, 5 अंतरे लिखते थे वहां बख्शी साहब 30-30 अंतरे लिख के देते थे।
0: जब होंगे जाने कहां होंगे 59 अंतरस।
1: अरे बाप रे, 59।
0: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहर ही है, इसको बहने दो, रुको मत क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे। तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबड़ के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाया गया है।
1: जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
0: मुझे के नैयर साहब ने बताया था
1: जी,
0: जर्नलिस्ट, कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफी बार फोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कह रहा था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले? बोला आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था? वो जू से निकलते थे पारसवाणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरी क्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरी क्रॉस रोड से लेते थे और ये लोग जाते थे बर्ली सीफेस।
1: अच्छा, और आगे निकल जाते थे?
0: हाँ, बर्ली सीफेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे।
1: अरे,
0: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव फॉर अनबख्शी वर्स, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
1: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
0: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
1: जी,
0: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
1: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
0: यस यस,
1: जब वो स्ट्रगल कर रहे
0: थे, जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, इतना सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, तब इमोशनल हो गया हूं कहानी सुन के। और उन्होंने ये लाइन कही थी प्यारे जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का,
1: मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना।
0: ही सेड मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग्स आर यू टू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको, समा ये सुहाना।

0: मैं खुश हूं, मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट वॉज अ कॉम्प्लीमेंट टू एलपी, ये मुझे प्यारी जी ने बताया था कि ये हमारे लिए बख्शी आपको ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी जरूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो, कमाल करेंगे हम साथ में।
1: मुबारक हो सबको समाये सुहाना।

0: क्यों बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट्स हैं मैगजीन के मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसे जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं 70 रुपए का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपये मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम, किसी और की घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें हाँ। बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: हाँ, तो उनको लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो यू आर अराइव्ड, यू नो जो इंग्लिश में बोलते हैं यू आर अराइव्ड, हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका, तो
0: बड़े कामयाब हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं, तो टू रबिश इट यू नो कि नहीं नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूँ यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया खत्म हो जाऊंगा, उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती। चुप बैठो रिफ्लेक्ट करो, आरडी पे डाल दो, एलपी पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाई तो हुआ। तो वो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, वो रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था रेड का, तो वो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था और एक फकीर लेट राइट, उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का आई थिंक सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था
1: जी।
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहां गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा। और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है,
1: वाह
0: बख्शी बॉस, जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी,
0: तो कामयाब हो गया है।
2: सावन का महीना पवन करे सोर,

0: बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। इसका जो क्रेडिट है ना, इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो, तो अगर यूनुस खान अगर वहां का टॉप जॉकी है, तो आप ट्राई यू विल ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सयानी इज योर गुरु, यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सयानी। तो शैलेंद्र ने बोला, देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो मजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग थे, उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उनको तो उर्दू बहुत सेकंड लैंग्वेज फॉर फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें, उसको गाएं भी, तो उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो, जैसे मैं लिखता हूं।
1: ये एक
0: एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक, जो मैं चाहे यार करूं,
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

को ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ।

है मेरे लिए मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: और फर्ज इतनी बड़ी हिट थी, इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म अक्रॉस इंडिया कि सर यार शैलेंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहां से आए? शैलेंद्र की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर अनबख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी।
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी।
2: चलो
1: शुक्रिया,
2: थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ चल दिया बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से

मधु मुखर्जी के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं ये पारंपरिक रचना, आवाजें आशा भोंसले और

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अनुराधा पौडवाल की आवाज में हम आपको संत कबीर का भक्ति पद सुनवा रहे हैं। धुन बनाई है शेखर सेन ने।

अभी आपने अनुराधा पौड़वाल की आवाज में संत कबीर का ये भक्ति पद सुना। रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम, आवाज बेगम अख्तर की।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, गुलजार साहब के बोल और आवाज आशा भोसले की।

0: कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुन

अभी आप सुन रहे थे बैजू मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सईद राही का कलाम, आवाज घनश्याम वासवानी की।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, आवाज मिताली सिंह की और गुलजार साहब की ये रचना है।

0: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिरला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
3: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

0: भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
1: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था विधाता। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, एसपी बालासुब्रमण्यम, कुमार सानू, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें फिल्म साजन के लिए।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: राहत इंदौरी का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे संगीत में ढाला है अनु मलिक ने, आवाजें श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS।

और आइए अब सुनते हैं पंकज उदास और साथियों की आवाजों में फिल्म नाम का ये गीत, रचना आनंद बख्शी की और तर्ज लक्ष्मीकांत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: फिल्म वास्तव का गीत सुनिए, गाने वाले कलाकार कुमार सानू और साथी, गीत रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत शांतनु मोहित्रा का संगीत है, स्वानंद किरकिरे की बोल, युगल स्वर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

0: कटेगा पल हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल।
1: इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने संजय दत्त की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने थे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं।

0: एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनः निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Lok Sabha has resumed discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh had moved the bill in the House yesterday. Participating in the discussion, JDU MP Dileshwar Kamath expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for bringing the bill in the Parliament, stating that it will ensure a brighter future for students while enhancing transparency in the education system. Opposing the bill, N.K. Premachandran of RSP said that the bill is inadequate to achieve the purpose stated in the bill. He alleged that the changes brought in the proposed bill are merely cosmetic. The Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. When the House reassembled at 12 noon after the first adjournment, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but opposition members started sloganeering, pressing their demands. The Lok Sabha has extended the tenure of the Joint Parliamentary Committee examining the legislation related to One Nation, One Election up to the first day of the last week of the winter session 2026 of Parliament. The chairman of the committee, BJP MP P.P. Chaudhary, moved the motion to extend the tenure of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. The bill seeks to introduce simultaneous polls to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The motion was adopted by voice vote in the House. Several BJP MPs, including from Jharkhand, today staged a protest at parliament premises over their

0: होने पर दिया जोर। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर के दुम्मा प्रवेश द्वार पर राजकीय श्रावणी मेले का किया विधिवत शुभारंभ। मेला अवधि में स्पर्श पूजा पूरी तरह रहेगी बंद। आज देश भर में मनाया जा रहा आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का त्योहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। राज्य में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी। सीआरपीएफ ने सीसीएल के एनके और पेपरवार एरिया के जंगल से भारी मात्रा में अवैध कोयला किया बरामद। और रांची में 135वें डोरंट कप प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम और श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सावन का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज देवघर स्थित बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में नगर विकास सह पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने राजकीय श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रहीं। इस दौरान मंत्रियों ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की और कांवरियों के मार्ग का शुभारंभ किया। श्रावणी मेला

0: नदी में स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान श्रद्धालु केवल बाह्य अर्घ्या के माध्यम से जलार्पण कर सकेंगे। रांची नगर निगम ने कल से शुरू हो रहे पवित्र सावन महीने को लेकर पहाड़ी मंदिर और अन्य प्रमुख शिवालयों में सफाई, पेयजल, लाइट और सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहाड़ी मंदिर परिसर और मार्ग पर 100 सफाईकर्मी, स्वर्णरेखा घाट पर 40 और शहर में 1200 कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षित आवाजाही के लिए स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और पेड़ों की डालियों की छटाई की गई है। नगर निगम ने पहाड़ी मंदिर और प्रमुख शिवालयों के आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं करते बल्कि अपने शिष्यों को सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण करते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर राज्य के युवा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बोकारो में युवाओं से अपील की कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा रखें, सीएम युवाओं के साथ गलत नहीं होने देंगे।
1: हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया, जैसे ही संज्ञान में मिला कि चिंटियां पाई गई, गौड़िया पाए गए, लोग जेल में है, वो चेयरमैन है, उनका इस्तीफा लिया गया है। हमारी सरकार पारदर्शिता की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम लोग खामियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, युवाओं से अपील करेंगे, हमारी सरकार युवाओं के साथ।
0: बोकारो जिले में एसआईआर के डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि गोमिया, बेरमो और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हुआ है, जबकि बोकारो विधानसभा क्षेत्र में भी 99.66% डिजिटाइजेशन हो चुका है। उपायुक्त ने सभी ईआरओ और एईआरओ को एक बार फिर डेटा का सत्यापन करने को कहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीआईएसएफ ने सीसीएलएनके और पेपरवार कोल्डफील्ड में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में छिपाकर रखा भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया। सहायक कमांडेंट हर्ष लवानिया के नेतृत्व में टीम ने पेपरवार एरिया के कांटा संख्या 9 के पास दो जगहों से कोयला जब्त किया। वहीं कमांडेंट अमित कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय संपदा की चोरी रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा, अवैध खनन और तस्करी में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय में कल 37वीं कॉरपोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें खदान सुरक्षा और श्रमिक कल्याण पर मंथन हुआ। बैठक में अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों, वैधानिक अनुपालन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और महिला कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाओं और अलग सुरक्षा व्यवस्था पर सुझाव दिए। झारखंड के आदिम जनजातियों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी शिक्षा, भाषा और संस्कृति के संरक्षण को लेकर रांची में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में असिस्टेंट प्रोफेसर अभय सागर मिंज सहित कई विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी।
2: राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम जो हमारे रांची में हो रहा है, ये अति संवेदनशील जनजातियों के लिए हो रहा है। जरूर ये लोग मंथन कर रहे हैं, जहाँ कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से की है, आईएम वगैरह लोगों से लोग आए हुए हैं, टिस से लोग हैं और बहुत सारे ऐसे सिविल बॉडीज हैं जो इस पे मंथन कर रहे हैं।
0: गुवाहाटी से देवघर के लिए विमान सेवा 4 अगस्त से शुरू होगी। गुवाहाटी से 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार उड़ान सेवा उपलब्ध रहेगी। झारखंड में बढ़ते ब्रेन मलेरिया के मामलों में नियंत्रण लाने के लिए इलाज की पद्धति में बदलाव की नीति पर मंथन किया जा रहा है। रिम्स के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार ने बताया कि चाईबासा के गोयल

0: केरा में आईसीएमआर और एनआईएमआर की देखरेख में शोध जारी है।
1: फैल्सीपेरम मलेरिया सेरेब्रल मलेरिया कहला रहा है या ब्लैक डेथ जिसको कहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी डेथ्स होने के चांसेस और सीवियर मलेरिया का फॉर्म होता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस में, सेकंड डे पे प्राइमोक्विन देते हैं, तो उसी पे शोध चल रही है, 5 राज्यों में चल रही है, उसमें झारखंड भी है। फैल्सीपेरम मलेरिया का काफी प्रेवलेंस है यहाँ पर।
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर, जबकि निफ्टी 248 अंक की वृद्धि के साथ 24,233 पर कारोबार कर रहे थे। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। 135वें डोरंड कप में आज बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में दूसरा मुकाबला होगा। इस मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम का सामना श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी से होगा। डिफेंडर्स एफसी जमशेदपुर एफसी से 0-5 की हार के बाद आज के मैच में वापसी की कोशिश करेगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स विजयी शुरुआत के इरादे से मैदान में उतरेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्यों को गति देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होने पर दिया जोर। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर के दुम्मा प्रवेश द्वार पर राजकीय श्रावणी मेले का किया विधिवत शुभारंभ। मेला अवधि में स्पर्श पूजा पूरी तरह रहेगी बंद। आज देश भर में मनाया जा रहा आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। राज्य में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी। सीआईएसएफ ने सीसीएल और एनके तथा पिपरवार एरिया के जंगल से भारी मात्रा में अवैध कोयला किया बरामद। और रांची में 135वें डोरंड कप प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम और श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी के बीच होगी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बेहद पसंद है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो गीत फिल्मांकन में या फिल्मों में नहीं दिखाया गया था? और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जो आपको बेहद पसंद है, जिसे देखने के लिए आप उस फिल्म को देखने गए थे थिएटर तक, और वहाँ जाकर आपको पता चला कि अरे ये गीत तो फिल्म में रखा ही नहीं गया है, तब आपको कैसा लगा होगा, क्या मनस्थिति आपकी रही होगी, ना वो फीलिंग्स आपको हमारे साथ शेयर करनी है। तो सवाल एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, ऐसा कौन सा गीत जो आपको पसंद है और फिल्मी पर्दे पर वो गीत आज भी जब हम उन फिल्मों को देखते हैं कहीं न कहीं तो वो फिल्म में हमें नहीं दिखाई देता है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हाँ, ऐसा कोई गीत जिसे देखने के लिए आप थिएटर तक गए और उस फिल्म को देखने आपने पूरा देखा, लेकिन पता चला कि अंत तक वो गीत उस फिल्म में कहीं भी नजर नहीं आया, उसके बाद आपकी मनस्थिति क्या हुई, उस फिल्म का उस गाने का जिक्र हमारे साथ आपको करना है कम से कम शब्दों में। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में एसएच बिहारी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम है सावन की घटा।

दोस्तों 1966 की फिल्म है ये सावन की घटा और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। ओपी नैयर का संगीत था। कहते हैं कि इसे साउंडट्रैक एल्बम में तो जारी किया गया था लेकिन संपादन या अन्य कारणों से ये पर्दे पर फिल्माए गए दृश्यों में ये गीत नहीं आ पाया था।

हमारे श्रोता का कहना है कि आज की सुंदर सी इबारत में विरह, याद, तड़प, बिछड़न और अधूरे प्रेम की गहरी अनुभूति है। भाव भी यही है कि प्रेम में बिछड़ने के बाद हर पल याद, तन्हाई और इंतजार का एहसास बना रहता है, फिर भी दिल तो दिल है। ये हर पल किसी न किसी की याद में धड़कता है, किसी की खुशी में मुस्कुराता है और किसी की कमी में चुपचाप भीग जाता है। यही तो दिल की सबसे खूबसूरत पहचान है। और आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज काव्यांश का मूल भाव शायद ये है कि याद, तड़प, इंतजार और विरह ये चार शब्द नहीं बल्कि प्रेम के वे चार महाद्वीप हैं जिनसे निकलकर हर सच्चा अनुराग अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। याद वर्तमान में अतीत की सजीव उपस्थिति है, ये हृदय के वीराने में चुपके से जलने वाला दिया है। तड़प बिना धुएं के लगातार सुलगती हुई प्राणों की आग है। इंतजार प्रेम की पराकाष्ठा है जो चौखट पर टंगी आंखों की मुख प्रार्थना है। विरह को विप्लव श्रृंगार कहा गया है जिसे मिलन से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। ये मिलन की आनंदमयी सुबह से ठीक पहले की घनी रात है। यानी याद अगर बीज है तो तड़प उसकी अंकुरण की छटपटाहट है, इंतजार पौधे को सींचना है और विरह वो मौसम है जो अंततः मिलन के अमर फल को जन्म देता है। आपने आगे लिखा है कि गाने पर्दे पर जीवंत नहीं हुए लेकिन कानों को सुकून जरूर देते हैं, वही गाने आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाती है जिस कारण निर्देशक को मजबूत गानों को भी हटाना पड़ता है। कहानी का ट्रैक बदलना, अगर किसी गाने के आने से फिल्म की कहानी की मुख्य धारा प्रभावित होती है या भटकाव महसूस होता है तो संपादन के दौरान यानी एडिटिंग के दौरान उसे हटा दिया जाता है। ऑडियो की लोकप्रियता फिल्म से हटने के बावजूद संगीत प्रेमियों के बीच ये ट्रैक कैसेट और एल्बम के माध्यम से अमर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी विरह व्यथा की आह है, याद, तड़प और इंतजार की राह है। सुनी है राहें, सुना है डगर, तुम्हारे बिना थम सा गया है सफर। खिलते हैं फूल पर खुशबू नहीं है, पास है सब कुछ मगर वो एहसास नहीं है। कहने को तो सारा जहां साथ है मेरे, पर सच कहूं तो हर तरफ घने अंधेरे। तुम ही हो मेरी दुनिया का उजाला, बिन तुम्हारे सुना है इस जीवन का प्याला। बहुत सुंदर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

शुक्र को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मुनीम जी, गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो सवाल आज के जो हमने आपसे पूछे हैं एक बार फिर आपको दोहराई देते हैं, किसी एक गीत का नाम बताइए, फिल्म का नाम बताइए, गाने के बोल बताइए, कलाकार का नाम बताइए जो गीत आपको बेहद पसंद है और वो फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया लेकिन रेडियो के जरिए आपके दिलों तक पहुंचा और आज भी अपने दिलों में अपना घर बनाए हुए है। बस किसी एक गीत का जिक्र। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल यह है कि ऐसा कोई गीत जब आप उसे देखने के लिए, उसका फिल्मांकन देखने के लिए किसी थिएटर में गए हो उस फिल्म को देखने के लिए और वहां जाकर आपको पता लगा कि अरे इस गीत को तो फिल्म में रखा ही नहीं गया, तो आपकी मनस्थिति क्या थी, कौन सा था वो गीत और आपको उस फिल्म को देखने के बाद फिर कैसा लगा, वो अनुभव कम से कम शब्दों में आपको साझा करना है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि विरह केवल बिछड़ने का नाम नहीं बल्कि उस प्रेम का दूसरा रूप है जो मिलन से भी ज्यादा अधिक गहरा होता है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसमें शिकायत कम और प्रतीक्षा अधिक होती है। किसी की याद आज भी आपकी मुस्कान और आपकी आंखों की नमी दोनों की वजह हो सकती है और वो प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कुछ ऐसे गाने आप सुनाने को बेताब लग रही हैं और हम भी जो गाने फिल्मों से हटा दिए गए लेकिन वो बेहतरीन नगमे हैं, जब आप प्ले करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये गाने कभी हमने सुने थे या नहीं। तो अब तो आपको पता लग गया होगा, लगभग आधा कार्यक्रम निकल चुका है, आपने काफी गीत सुन लिए हैं, अब बताइएगा कि ये गीत आपने सुने थे या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अपने फिल्म के लिए गुलजार साहब ने मीना कुमारी को जहन में रखकर गीत लिखा, रोज अकेली आए बेचारी जाए चांद कटोरा लिए भिखारन रात। लेकिन गीत शूट होने से पहले ही मीना जी नहीं रही, सुमनताई कल्याणपुर की आवाज में ये गीत कभी कभी रेडियो पर सुनने को मिलता है, आज भी आप सुनाइए। नहीं, आज तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन हाँ, जब भी इसी तरह का कार्यक्रम या कभी कोई खास गाने हम लेकर आएंगे तो इस गीत को जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत भी बहुत अच्छी है, इस प्रकार के गीत तो बहुत सारे हैं, पर एक कव्वाली शोले फिल्म की थी जिसे मन्ना डे, शैलेंद्र और किशोर कुमार जी ने गाया था। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाने जो है मन को रोशन कर देते हैं। मंदाकिनी जी, एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। आज हम कार्यक्रम के जरिए सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से गीत हैं जो फिल्मों में शामिल नहीं किए गए थे। वहीं हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रम अगर अलग अलग तरीके से पेश किए जाए तो अच्छा लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का प्रसिद्ध गीत है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया फिल्मों में नहीं रखा गया था और संगीतकार ओपी नैयर और गायिका आशा भोंसले के बीच व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन फिल्म में ये गाना न होने पर फिल्में पर्दे पर फिल्माया नहीं गया, इसके बावजूद गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी गाने के लिए आशा भोंसले को वर्ष 1975 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। वो गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। एक श्रोता लिखते हैं कि रात की तन्हाई में जब आपकी याद आती है तो दिल की फरियाद और भी गहरी हो जाती है, नींद और चैन कहीं खो जाते हैं और तब लगता है कि जमुना किनारे सजी यादों की महफिल में ये जहां सूना सूना लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनने के लिए हम तैयार हैं, आपके साथ सुरीला सफर तय कर चुके हैं और आगे आप तक बने रहेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। जी, तो हमें बिल्कुल यकीन है कि सुरीला सफर में आप हमारे साथ हैं और उन गीतों के साथ हैं जो हमने अक्सर सुने हैं और ये गीत हमारी जिंदगी में रच बस गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत है, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम मेरे सनम।

हमने जो दो सवाल आपसे किए हमारे श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आम्रपाली का एक गीत जो लता जी ने गाया था लेकिन फिल्म में नहीं दिखाई पड़ा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कार्यक्रम सुनने का आनंद ही अलग है, दुर्लभ मधुर गीत सुनकर मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए फिल्म का गीत, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुनीम जी का गीत जो आपने सुनवाया था इसे लता मंगेशकर ने गाया था, एसडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था, हालांकि ये गाना अपने आप में एक बेहतरीन रचना थी लेकिन फिल्म की पटकथा और गति को ध्यान में रखते हुए इसे थिएटर से पहले हटा लिया गया था, रिलीज होने से पहले हटा लिया गया था, जो बाद में ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल वो गीत बहुत ही खूबसूरत था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो दीदी आप एक ऐसे कार्यक्रम को गूंथ कर लाई हैं, ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो सिर्फ विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर ही सुनने को मिलते हैं, शुक्रिया आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये मेरे सबसे प्रिय गानों में से एक है, आशा भोसले की दर्द भरी भीगी भीगी आवाज, ओपी नैयर का अद्भुत संगीत और एस एच बिहारी के भावपूर्ण शब्द इस गीत को एक नया अनुपम ऊंचाई दे देते हैं। इस गीत को सुन सुनकर मेरे मन में इसे बड़े पर्दे पर देखने की तीव्र इच्छा थी, इसी उत्सुकता के साथ में प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म देखने गया, पूरी फिल्म समाप्त हो गई लेकिन ये गीत कहीं दिखाई नहीं दिया, उस क्षण जो निराशा हुई उसे शब्दों में बांधना कठिन है, हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में ये गीत एक विशिष्ट और अमर पहचान रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत सुनने के बाद तो वाकई दिल में एक अलग ही किस्म का दर्द उठता है, तो चलिए इसी गाने को सुन लिया जाए। आपने जैसा कि बता ही दिया है कि ओपी नैयर का संगीत है, एस एच बिहारी के बोल हैं, आशा भोसले की आवाज है और फिल्म का नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिस दौर में कलात्मक फिल्में बना करती थी वो दौर तो स्वर्णिम काल था। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए, फिल्म का ये गीत चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। ये फिल्म देखने बार बार हम इस गीत को याद करते हैं। मल्टी स्टारर और डाकुओं की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म की कहानी तो अच्छी थी लेकिन ये गीत पूरी फिल्म में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपके हैं कौन का फिल्म छत्रपति संभाजी नगर में प्रदर्शित हुई, तब थिएटर मालिक ने माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया चॉकलेट लाइम जूस गीत काट दिया था, फिर कुछ सप्ताह बाद फिल्म में से दिखाया भी गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का गाना चैन से हमको कभी, ये गाना कई बार रेडियो पर सुना है। 1972 में यानी 1972 में, फिर जब 1974 में मेरी शादी हुई तो मैं पत्नी के साथ देखने गया था फिल्म, परंतु इस गाने को फिल्म में नहीं देखकर बहुत ही निराशा हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो आज जो जानकारी बटोर रही हूं कि इतने सुपरहिट गीत हैं जिन्हें हम सुनते रहते हैं और ये फिल्मी पर्दे पर कहीं दिखाई नहीं गए थे, ये जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान अभिनीत फिल्म 10 जिसमें एक गाना था 10 बहाने करके ले गई दिल, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सावन की घटा जिसका गीत अभी आपने सुनवाया, होठों पे हंसी आंखों में नशा संगीतकार ओपी नैयर की एक बेहतरीन और मधुर रचना थी जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया था, ये बात सही है कि ये गाना फिल्म के सिनेमाई प्रदर्शन स्क्रीन पर फिल्मांकन में से हटा लिया गया था और केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या एल्बम में ही उपलब्ध रहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि होठों पे हंसी जो गीत आपने सुनवाया आशा ताई और रफी साहब की आवाजों में इस दिल

कश गीत के लिए मैं आपका यानी मेरा मंदाकिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने खूबसूरत गीत को आज हमें सुनवाया है। क्या बात है, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। लिखते हैं कि वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया है, बहुत खुशी की बात है। और अगर हमारे श्रोता खुश हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई होती ही नहीं है, यकीन करिए हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यूपी नैयर साहब अपनी खास तांगा लय और फुट टैपिंग संगीत के लिए जाने जाते थे। इस गाने में भी उन्होंने अपनी उसी सिग्नेचर शैली का इस्तेमाल किया है। गाने का संगीत बेहद चुलबुला ऊर्जावान और रोमांटिक है। एकोस्टिक गिटार ढोलक और सैक्सोफोन का जो मिश्रण नैयर साहब ने तैयार किया, सुनते ही श्रोता तो झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पांच राइफल्स का झूम बराबर झूम शराबी जो गाना है, वो फिल्म देखने जब हम गए तो पता चला कि ये गाना काट लिया गया है, तो हमें बेहद निराशा हुई। जी तो आज इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है उन 10 गीतों को लाने की। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं ऐसे जिन पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कई सारे कार्यक्रम हमें देने पड़े, लेकिन आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फिल्मों में किसी न किसी वजह से हटा लिए गए थे। और जब कोई श्रोता या हम में से कोई एक उस फिल्म को देखने गया होगा उस गीत को खास सुनने के लिए, तो उसे बेहद अफसोस भी हुआ होगा या निराशा हाथ लगी होगी। ऐसा ही एक गीत है फिल्म कश्मीर की कली का। आशा भोंसले की आवाज है, SH बिहारी के बोल हैं, OP नैयर साहब की धुन है। आइए सुनते हैं ये गीत। कहते हैं ये गीत दिखाया गया था इस फिल्म में, लेकिन बाद में इस गीत को हटा लिया गया था।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत शानदार है, उन गीतों को न चाहते हुए भी जब फिल्म में नहीं देखा गया तो बहुत उदासी सी छा जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रोटी के गीत की, फूलों के साथ दिल भी, ये लता मंगेशकर की आवाज में गीत है। और जब मैं फिल्म देखने गया तो ये गीत उस फिल्म में नहीं था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बिल्कुल आपने सही कहा। और जब हम अपनी पसंद का कोई गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं देखते हैं या वो निकल जाता है तो हमें बेहद अफसोस होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुना है कि फिल्म शोले की शुरुआत में कव्वाली रखी गई थी अमजद खान पर फिल्माया गया था, क्या वो गीत आज सुनने को मिलेगा? जी नहीं, आज इस कार्यक्रम में तो हमने उसे शामिल नहीं किया है। हाँ, आगे कभी हम उस गीत को ढूंढकर जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सुनहरा संसार का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ हेलो हेलो जो राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया जाने वाला था, वो नौशाद के किशोरदा के प्रति पूर्वाग्रह के कारण फिल्म के निर्देशक तक नहीं पहुंच पाया, पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर वो गाना चढ़ गया था। वो गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बाजीगर का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जब मैं उसे कैसेट या टेप खरीद कर लाया तो मैंने इस गीत को कई बार सुना और मैं फिल्म देखने गया बड़े चाव से इस गीत को सुनने के लिए, लेकिन वो फिल्म में मुझे लास्ट तक वो गीत सुनाई नहीं दिया तो मुझे बेहद दुख हुआ। गुट है समझकर चांद जिसको आसमाने, अच्छा कोई गाना जो विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में है वो आपको बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी कुछ याद तो नहीं आ रहा मगर फिर भी कुछ फिल्में हमने देखी हैं जिनमें से कुछ चुनिंदा गीत को तो फिल्म से हटा दिया गया था मगर आकाशवाणी और ऑडियो कैसेट के जरिए हमने उन्हें कई बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म हकीकत का गाना, खेलो ना मेरे दिल से और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें हटा लिया गया था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंद का गीत फिल्म राम और श्याम का है जो फिल्म में नहीं रखा गया, वो है मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझे प्यार करो, इसमें दिलीप कुमार और वहीदा रहमान है, ये गाना भी मुझे बेहद पसंद आता है। और कई श्रोताओं ने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है, लेकिन अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना, फिल्म नीला आकाश से हमने लिया है, लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को आपने बहुत कम सुना होगा, बेहद ही खूबसूरत गीत है, राजा मैदेली खान की बोल है और मदन मोहन की

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म नीला आकाश का ये गीत सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ लंबी होने की वजह से जो गीत काट दिए गए, लगता है उनमें से कुछ गीत तो ऐतिहासिक गीत बन गए। जी हाँ बिल्कुल, और ये गीत हमारे दिलो दिमाग पर आज भी असर किए हुए हैं, ये बात क्या कम है। तो अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें बाघों की। एक इंसान के तौर पर हम सभी जीवों की सुरक्षा का दायित्व रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वन्य जीवों की देखभाल करें। बात भारत की हो तो हमारा देश कई वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी रहा है, इनमें ही शामिल हैं बाघ। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में विश्व के कुल बाघों में से तकरीबन 75% बाघ वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में उसे बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हुई और आज बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाघ एक प्रमुख शिकारी जानवर माना जाता है, इसलिए उससे हम इंसानों का डरना स्वाभाविक है। उस पर न जाने बाघों को लेकर कितने किस्से कहानियां भी तो हमने सुन रखी हैं। वैसे बच्चों को तो वन्य जीवों के कई गीत भाते हैं, जैसे कि ये।

0: हालांकि शेर, चीते और बाघ जैसे वन्य प्राणियों के हमलों को लेकर कई किस्से कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तरह हम उनसे डरते हैं, वो भी हमसे बिल्कुल उसी तरह डरते हैं। कई बार मानव बस्तियों में शेर, चीते या बाघों का आना तो हमने सुना है, किंतु क्या वाकई वो हमारी बस्ती में आते हैं, या हमने ही उनकी रहने की जगह पर कब्जा करते करते उनके लिए स्वतंत्र रहने की जगह ही बाकी नहीं रखी है। फिर भी शेर, चीते और बाघ जैसे प्राणी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी मानव से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव उनसे भी ज्यादा हिंसा प्रेमी रहा है। अगर वो गलती से भी मानव बस्ती में आ जाएं, तो उन्हें बचकर जाने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, और मानवों के पास बाघ, शेर, चीतों को भगाने के न जाने कितने किस्से हैं।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पास, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
1: फिर क्या हुआ?
2: खुदा की कसम।

0: किया, लेकिन आप तो जिंदा है।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,
2: वन्य जीवों के संरक्षण में तो हम अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा में हम अपना हिस्सा निभाते हैं? वन्य अभयारण्य या जू आदि में जब हम शेर, चीते या बाघों को देखने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीजें फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी ओर देखें। उनके साथ फोटो लेने की होड़ भी इन दिनों हावी रहती है। इसके लिए तरह तरह की फ्लैश लाइट्स भी उनके मुंह पर चमकाने से हम नहीं चूकते, जबकि इससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान भी हम उन्हें परेशान करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। अब जब हम उनके आधे से ज्यादा निवास स्थान पर अपना आधिपत्य जमा ही चुके हैं, तो कम से कम उनके संरक्षित स्थलों पर तो उनकी सुविधा का ख्याल रख ही सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर सभी जीवों का सम्मान करना भी तो हमारा ही फर्ज है, ताकि वो भी अपने स्थान पर उसी सुकून से रहें जैसा हम अपने घर में रहते हैं।

आज ही कीजिए ये फैसला कि अब से अपनी ही तरह हर जीव की देखभाल का भी करेंगे ख्याल। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी यही समाप्त होती है। दीजिए अपनी दोस्त निहार शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा, विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद N.K. प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर को कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौड़ने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: JPSC बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो JPSC में धांधली हुआ इसको CBI जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद PP चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि सिर्फ PP चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
5: हाँ।
4: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
6: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
5: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
8: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
9: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है सुहाग रात, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सुहागरात। गीतकार थी इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म का नाम शिकार, गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। गीत इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है।

फिल्म साथी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन नौशाद साहब की और आवाज लता मंगेशकर की है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और
2: आ गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर का गीत, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का है।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। संसद परिसर में आज झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मांग की कि कांग्रेस को राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए।
1: झारखंड के अंदर जेपीएससी घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ और आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। उत्पात सिपाही दौड़ में हमारे 16 युवा मारे गए, कौन न्याय देगा? क्यों नहीं उनको सरकारी नौकरी देते उनके परिवार को? एक हाथ में सुरमा और एक में वो, हम तो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे।
0: वहीं जमशेदपुर से लोकसभा सदस्य विद्युत वरण महतो ने राज्य सरकार की नीतियों और हालिया परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल उठाए हैं।
2: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है, अभी उत्पाद विभाग के सिपाही की बहाली में 17 सिपाही का जो मृत्यु हुआ है उसको हम लोग मांग करते हैं कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसके लिए हम लोग धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: सुरक्षा बलों ने झारखंड, बिहार और ओडिशा में आतंक का पर्याय बने 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी कमांडर मिस्टर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है। आईबी, सीआरपीएफ और धनबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से बेसरा को उसके 2 सहयोगियों के साथ दबोचा गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और वाहन जब्त किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से आज लगातार दूसरे दिन सीआईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल उनसे 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। एम्स देवघर के डॉक्टरों ने पहली बार बिना बड़े ऑपरेशन के एक 14 वर्षीय बच्चे के दिल का सफल इलाज किया है। अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन तकनीक का उपयोग करके जटिल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को पूरी तरह ठीक कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर में आस्था के महापर्व राजकीय श्रावणी मेला का आज झारखंड बिहार सीमा के दुमा प्रवेश द्वार पर पारंपरिक शुभारंभ हो गया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार ने कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

0: 对不？俺本来俺都是穷的穷的，
1: 大家说这个看看对不？
0: 十二分钟 master 嘛，也开不十分钟个两年呢，他妈尼啊的，那个就当过来看，这都那个不你穷的多，跟那个瓦楞嘎，跟那个干活，我们也是。
1: 那都一点嘛都就马爹的皮皮瓜色，也十分钟没吧？对了，我到家是个地主家。
2: लोहरदगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना पर प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी 2,93,871 मतदाताओं के प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस सामूहिक प्रयास के बाद अब आगामी 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। लोहरदगा मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में बंद एक कैदी की संदिग्ध मौत के बाद आज कुड़ू प्रखंड के पंडरा में ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कुड़ू रांची मुख्य पथ को करीब 2 घंटे तक जाम रखा, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया। आज पूरे राज्य में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य भर के प्रमुख मठों, मंदिरों और आश्रमों में सुबह से ही गुरु पूजन और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विशेष रूप से जामताड़ा जिले के धार्मिक स्थलों पर आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिले के नारायणपुर प्रखंड में बराकर नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध दुखिया बाबा मंदिर और नाला प्रखंड के देवलेश्वर धाम में हजारों की संख्या में नर नारी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी गुरु को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा उन्हें प्रणाम। सोनाली आपको भी नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
0: आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सच में अगर गुरु न होते तो हम इतना सब कुछ कैसे सीख पाते लगता है। हालांकि सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, माँ के बाद सबसे पहली गुरु या पहला गुरु जो होते हैं वो स्कूल में टीचर होते हैं। तो कई बार ये स्थिति आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
1: बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए।
0: हाँ, तो ऐसी नौबत भी आती है तो हमें लगता है कि बस जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्हें प्रणाम कर लें। आज
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी हमने विविध भारती से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल, तो हम सभी विविध भारती को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमने भी तो सीखा है
1: जी, और हमने बहुत सारे हमारे जो साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है। वो जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को
0: बिल्कुल
1: मिलता है।
0: और श्रोताओं का से तो हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है
1: जी,
0: जब वो कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हैं, कोई आलोचना लिखते हैं, तो उससे हमें हमारा विकास होता है, परिष्कार होता है हमारी भाषा का, शब्दों का जो हम बोलते हैं और विषयों का। अब बात विषयों की चली है तो हम बता देते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और बाघ के नाम से डरी तो नहीं ना डर तो लगता है,
1: डर तो लगता है,
0: लेकिन घूमने भी जाते हैं।
1: बस हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए जब हम देखने जाते हैं।

0: क्रेडिट कार्ड का मायाजाल जिसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी।
1: बिल्कुल।
0: तो इस बारे में भी आप लिखकर भेजिए कि आप के क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से ने क्रेडिट कार्ड का हमें उपयोग तो करना ही है, पर उसे किस सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, यानी उसके माया जाल में हमें फंसना नहीं है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोनाली एक बात बताइए कि जब कहीं घूमने जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में तो क्या पहनना पसंद करती हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ड्रेस या फिर और कुछ?
0: साड़ी पहनना बहुत पसंद है।
1: हमें लगता है हर भारतीय स्त्री को साड़ी पहनना पसंद आता होगा। हमने तो सुन रखा है कि जो सुन क्या बातें होती रहती हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है, तो जो विदेशों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यहाँ से बाकायदा साड़ियां मंगवाया करती हैं
0: और पहनती और भी हैं बड़े शौक
1: मौकों
0: से।
1: पर शौक से पहनती हैं। तो साड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देंगे क्योंकि साड़ियों का
0: साड़ी केरल
1: साड़ियों का संसार क्योंकि बहुत समृद्ध है
0: जी।
1: तो साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और शब्द बहुत अहम होते हैं,
0: बहुत अहम होते हैं।
1: हाँ, वो एक तीर की तरह है। कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली दोनों वापस नहीं आते
0: नहीं आते।
1: तो इसलिए जो भी बोलें तो सोच विचार कर बोलें, शब्द हमारा और विचार आपके।
0: इसमें आदर को हमने चुना है तो आदर भी वैसे ही है ममता जी कि आदर जब हम देते हैं तो हमें आदर मिलता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या हम उम्र हों, सभी से आदर के साथ पेश आए तो हमें भी आदर ही मिलेगा।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: और व्यंजन,
1: उसके बिना तो अधूरा लगता है।
0: और व्रत के व्यंजन, अब व्रत के व्यंजन की बात चलती है तो वही बात चलती है, लोग वही मूंगफली दाने, वही साबूदाना, पर हम उसमें भी अगर कुछ पौष्टिक खाएं जैसे मखाने खा सकते हैं, फिर कच्चा पपीता है उसके व्यंजन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर रामदाना है जिसे राजगीरा भी कहते हैं या सामा के चावल, तो उसमें कुछ पौष्टिक हो तो उस तरह के व्यंजन में हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल। और मखाने के लड्डू भी बनते हैं,
0: मखाने की खीर बनती है,
1: जो खाने के बाद अक्सर मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं
0: जी,
1: तो अगर इस तरह खाएं, व्रत में खाएं या ऐसे भी खाएं, बहरहाल अब क्या करें।

0: आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रशस्त होता है, इसलिए हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब चाहिए आपने कहा ना, तो हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए
0: जी।
1: उसके लिए हमें खुद निजी स्तर पर जूझना चाहिए। एक कहावत याद आ रही है, जब बाघ की बात चली है, आज हमारा विषय भी है आज बाघ दिवस है, तो ऐसे में लोग कहते हैं ना कि जंगल की शान है बाघ, प्रकृति की पहचान है बाघ, जिस दिन जंगल से बाघ चले जाएंगे उस दिन जंगल भी वीरान हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक वन्य जीव नहीं है बाघ, बल्कि ये पर्यावरण के प्रहरी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और अगर हम जंगलों की जो कटाई होती है, क्षरण हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकेंगे तो हम बाघ की सुरक्षा कर सकते हैं। जो लोग शिकार करने जाते हैं और बड़े मजे से शिकार करके लौटते हैं और कहते हैं कि हम बाघ का शिकार करके आए, वो ठीक नहीं है। तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये वन्य जीव हमारे साथ नहीं रहेंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे, तो हम जंगल से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे
0: जी। और बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होते हैं संतुलन में। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं और एक स्वस्थ बाघ आबादी, समृद्ध जंगलों और बेहतर जल प्रणालियों को का संकेत देती है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
1: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक टाइगर समिति के दौरान ये हुई थी।
0: और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना इत्यादि बातें शामिल है। और भारत को विश्व के बाघ संरक्षण में अग्रणी देशों में माना जाता है। दुनिया के अधिकांश बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ने 1973 और बाघ अभयारण्यों की स्थापना जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: तो अब एक काम करते हैं, ऐसा ही एक गाना है जिसमें जंगल आता है और पूरा जंगल की कहानी है
0: और बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती है,
1: तो सुने वही गाना
0: जी।

ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। वैसे गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, संस्कार और

आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? कई साल पहले की ये बात है।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम।

0: हाँ तो भाई,
1: अरे एक साथ
0: हमारे एक साथी ने लिखा है, एक बाघिन तो मेरे घर में ही है, मेरी हाँ। वाइफ
1: अच्छा
0: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं
1: लेकिन भाई अगर वो सुन रही हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये बात उनकी सुन ली जाए और ताकि उनको ये दोबारा कहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कैसे कह सकते बाघिन
0: और एक सखी ने और लिखा है कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पार्क में हम बंद गाड़ियों में हम घूमने गए थे और जो दो बाघ अगल बगल से आ गए, जबकि हम सुरक्षित थे पर डर के मारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली और हम एकदम बुद्ध बनकर गाड़ी में बैठे रहे।
1: क्या बात है भाई। तो ये मतलब बाघ से डरना भी जरूरी है लेकिन बाघ से प्रेम करना भी जरूरी है
0: और बाघिन से भी डरना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और
0: डर में उपस्थित
1: हाँ वो डर प्रेम वाला डर होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डर अगर लगी तो फिर घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी।
0: वैसे आज साड़ियों का संसार, इसमें हम कसाबू साड़ी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो कसाबू साड़ी भारत की सबसे प्राचीन, गरिमामयी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है। अपनी सादगी, शालीनता और सुनहरे किनारे ने सुनहरी जरी के कारण कसाऊ साड़ी भारतीय हस्तकरघा कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।
1: और कसाऊ का मतलब ही है कि गोल्डन बॉर्डर किनारा ना, यही सुनहरी जरी इस साड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है, विशिष्टता भी है। पारंपरिक रूप से इसमें असली सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता था जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
0: बहुत महंगी हो जाएगी,
1: बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी तो इसलिए कि वो नहीं लगे तो अच्छा है
0: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपने विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
1: और अमूमन इसका मूल रंग सफेद या ऑफ व्हाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों में भी ये उपलब्ध है।
0: यानी आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हथकरघा यानी हैंडलूम पर किया जाता है। पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
1: और ये भी बता दें कि कसाऊ साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसाऊ साड़ी पहन लेती है। और कसाऊ साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
1: अब एक गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी, एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग-अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताजा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और वहां पर
0: पहन के पोस्ट करना।
1: पोस्ट करना, फोटो डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है।
0: जी
1: तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है। अब जैसे
0: लोगों के
1: सखी
0: ज्ञान
1: से
0: में भी बढ़ोतरी होती है।
1: जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुंचा रहे हैं कि जब आप जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, है ना।
0: जी,
1: तो अब क्या करें
0: आप
1: हम,
0: ब्रेक
1: एक
0: लेते हैं।
1: ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली। और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है, और हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते हैं,
4: माया जाल में उलझ जाते हैं।
0: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
4: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का

0: जी, जिनकी ने वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है।
1: बिल्कुल
0: क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं।
0: अरे
1: ये तो
0: मन
1: हम सब
0: बहुत है, भले हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में।
1: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही हैं,
0: पर
1: इससे
0: समय
1: बचना
0: के
1: चाहिए।
0: साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
1: जाहिर सी बात है, अगर ब्याज होगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये मायाजाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
0: हालांकि क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है। इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
1: बिल्कुल सही। सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को बजट का हिसाब करते हुए देखा था। कागज पर, पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे, आय कितनी है और कितने खर्च करने हैं। महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा। अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीजें खरीदते रहिए और हाँ, कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का,
0: ये
1: फायदे भी
0: आपने
1: हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने जमाने में यानी 2-3 महीने बाद में कोई बड़ा त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली, तो उसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज्यादा बचत करना है, तो फिर त्योहारों के वक्त हमारा खर्च ज्यादा होगा। आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं है।
1: और बुजुर्ग कहा करते थे, चादर जितनी हो उतनी
0: उतने
1: ही
0: ही
1: पांव
0: पैर।
1: पसारे।
0: जी
1: और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं।
0: जी
1: हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है। वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं, बल्कि संतुलित खर्च, नियमित बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
0: और जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है, और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछे, क्या मेरी ये आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
1: बिल्कुल सही कह रही। क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है, लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दें एक गाना इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी?
1: हाँ,
0: कहिए।
1: कहेंगे ममता जी। श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं।
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी
1: जी
0: तो सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाली मैं बताना चाहूंगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली है, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूं कि जान बची लाख उपाय।
0: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आह्वान किया था कि शब्द हमारे, विचार आपके,
1: जी
0: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है,
1: जी
0: तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या? और हमें तो इंतजार रहता है उनकी टिप्पणियों का, और उन्हें इंतजार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं। तो
1: जी
0: तब तक एक काम करते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं, और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी, तो
1: जी
0: हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत की शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहां पर एक मिनट हम अपने श्रोताओं से फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो, क्योंकि ये जो सेगमेंट हम श्रोताओं के नाम रखते हैं
1: जी
0: कि हम एक विषय देते हैं और आपको अपनी टिप्पणी लिखनी होती है,
1: जी
0: तो आदर शब्द हमने दिया है आज, तो आदर पर वो उनके क्या विचार हैं वो भेजें। तब तक हम ये टिप्पणी पढ़ रहे
1: जी
0: हैं। व्रत की शाही नमकीन बनाने के लिए कच्ची मूंगफली 100 ग्राम ले लें, और मोटा वाला साबूदाना ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चारोली, चारोली यानी चिरौंजी दाने,
1: चिरौंजी
0: और
1: जी
0: बादाम गिरी 100 ग्राम, मखाने 50 ग्राम, खरबूजा और कद्दू के बीज 50-50 ग्राम, शुद्ध घी तलने के लिए। अगर आप तलना नहीं चाहती हैं तो सिर्फ मूंगफली को भून ले, सेक ले, सारी चीजों को मिक्स करके ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर, काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी, और अगर घर में एयर फ्रायर ना हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं, या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबूदाना न डालें, साबूदाने को अलग से कढ़ाई में भून कर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
1: एक हमारे साथी ने मखाने या साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताजे दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताज़ा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी हलवा या नमकीन सिंघाड़े की कढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा, इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही वड़े लिखकर भेजे ममता
0: अरे
1: जी।
0: वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते हैं।
1: 1 कप सामा के चावल, 1/4 कप साबूदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे, फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डाले, साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ एक उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले, और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो 5 मिनट के रख दे, फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेंटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनार दानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है, जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने, ऐसे ही बगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर, फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी, छाछ और खूब सारा पानी, इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मेरे मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले, तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज की तुलना में खूब सारा तला भुना खा लें और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए
1: जी।
0: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे, कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए
1: जी।
0: लेकिन अभी और बाकी हैं, सुनते हैं गाना।

0: सोनाली, रात के कली एक ख्वाब में आई। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं
1: जी,
0: और ख्वाब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है, अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है तो बहुत खराब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब भी बोलें तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोलें, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: फिर कई वो बार बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो या फिर वो हम उम्र हो, है ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलते हैं?
1: जी, बोलना ही पड़ता है, आजकल के छोटे भी
0: सीखेंगे कैसे।
1: जी जी,
0: अगर हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है, और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है। इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है, अधिकार नहीं। उपहार आदर कभी भी ताकत या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता, इसे अपने आचरण से कमाया जाता है। आत्म सम्मान से जुड़ाव, जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता वो दूसरों का सच्चा आदर कभी नहीं कर सकता।
0: कई बार तो सम्मान लोग मांग के लेते हैं, कहते हैं कि देखो अरे आपने हमसे ऐसे बोला, हम तो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं और ये हम इतने बड़े हैं आपसे उम्र में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आदर नहीं मांगते हैं, वो जैसे भिक्षा मांगते हैं, और आदर मांग के नहीं लिया जा सकता है
1: जी।
0: आदर के लायक
1: कमाया जाता है,
0: कमाया जाता है, उसके लायक बनना पड़ता है। आपके आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो कि लोग अपने आप विनम्रता से झुक जाए आपके सामने।
1: एक साथी ने लिखा है कि आदर वो सुगंध है जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से फैलती है। जिस घर में आदर का दीपक जलता है वहाँ प्रेम की रोशनी भी कम नहीं होती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो खामोश भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है। इसमें ऊंची आवाज की नहीं बड़े दिल की जरूरत होती है। जहाँ आदर हो वहाँ रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं।
1: एक साथी ने और भी लिखा, आप पढ़ रही हैं? और
0: नहीं, आप पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं।
1: जी, एक साथ ही लिखते, आदर ऐसी चीज है जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। बड़े हो या छोटे, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी बात सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। मेरा मानना है सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता और रिश्ते, बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं। जब जहाँ आदर होता है वहाँ प्यार, अपनापन और विश्वास अपने आप आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे आपने हमें आदर दिया भी कि आप पढ़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए। तो ये एक शब्दों में आदर कहीं छिपा होता है
1: जी,
0: हमें बताने की जताने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम श्रोताओं को बता रहे हैं, वरना हम आपस में कहाँ कभी बताते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। क्या बात है भाई, जिस व्यक्ति के व्यवहार में सम्मान होता है उसके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहता है। बड़े हो या छोटे, हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। मीठे शब्द, विनम्र व्यवहार ही सच्चे संस्कार की पहचान है। हमने तो कई घरों में देखा है कि वो छोटे बच्चों से, 3-4 साल के बच्चों को भी आप कहकर बात करते हैं
1: जी।
0: तो कई बार ये भी लगता है इतने छोटे बच्चे को आप क्या कहना, लेकिन वहीं से सीखते हैं बच्चे
1: जी। और फिर बच्चे हम जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही वे पेश आते हैं।
0: अब आदर की बातें हो गई हैं, अब घड़ी की ओर जरा देखिए।
1: तो गाना सुनते हैं
0: ये गाना, प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: भाई दिल तो हमारा भी अभी नहीं भरा है, लग रहा है कि अभी और थोड़ा बोल लें बतिया लें, लेकिन बिल्कुल
1: रुकना पड़ेगा।
0: तो अब सभी श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: ही सहेली।
1: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
2: शर्मा परिसर में आज झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मांग की कि राज्य कांग्रेस को राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से आज लगातार दूसरे दिन सीआईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल उनसे 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। सुरक्षा बलों ने झारखंड, बिहार और ओडिशा में आतंक का पर्याय बने 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी कमांडर मिसर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है। आईबी, सीआरपीएफ और धनबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से बेसरा को उसके 2 सहयोगियों के साथ दबोचा गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और वाहन जब्त किए गए हैं। देवघर में आस्था के महापर्व राजकीय श्रावणी मेला का आज झारखंड बिहार सीमा के दुमा प्रवेश द्वार पर पारंपरिक शुभारंभ हो गया है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। एम्स देवघर के डॉक्टरों ने पहली बार बिना बड़े ऑपरेशन के एक 14 वर्षीय बच्चे के दिल का सफल इलाज किया है। अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन तकनीक का उपयोग करके जटिल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को पूरी तरह ठीक कर दिया है। गुमला में संवेदक संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। संवेदकों ने ऑनलाइन रॉयल्टी चालान की अनिवार्यता से हो रही परेशानी को दूर करने और विगत 4 वर्षों से लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। सजन

0: उठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग, पार्श्व गायक मुकेश की विनम्र

0: अच्छा ये बताइए अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग?
1: नहीं पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर वो बोलते हैं ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है घर के अंदर इंसान की आखिर पूरी पर्सनैलिटी अलग होती है
0: बिल्कुल
1: तो वैसा तो होता नहीं है।
0: हाँ।
1: कभी घर के अंदर तो उल्टा शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ बंद।
0: आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: मेरे साथ तो क्या है कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ रात को घर वापस आऊंगा, तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ, उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है, घर में शांति बनी रहती है।
0: ये देखो गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का। तो ये गाना सुनाइए फिर क्या।

फिर से कहो कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना।

0: तो मतलब ये गाना काम कर जाता है
1: कभी कभी कर जाता है। अच्छा ये बताइए रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रहा है बचपन से अब तक। विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूँ।
2: हम तो मैं समझता हूँ इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होकर 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमें सुनता था।
0: क्या बात,
2: तो आपको इतना हमने सुना है इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीजें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में, इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी।
0: क्या बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी,
1: बहुत बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गाँव में पला बड़ा हूँ वहां पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में।
0: हाँ,
1: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबू जी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच पे रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके पंखे आंकते रहता था और सुनता रहता था।
0: वाह वाह,
1: वो दौर लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब अब वापस नहीं आया।
2: हाँ, सच सच बात, सच बात,
1: बहुत मजा आता था उस टाइम पे,
0: एक सादगी थी और सब लोगों का साथ था,
1: सच में सच में,
2: और बहुत खुशी थी,
1: बहुत खुशी।
2: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी, लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकेंगे।
0: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
2: अभी हमारी चॉइस की बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं। ये ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना,
0: ये बड़ा मुश्किल हो जाता है
2: कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है।
0: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन,
2: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं।
0: और एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने।
2: हाँ क्या बात है, आप क्या फ्लूट उसमें बजाइए,
0: क्या बात है।

वाह वाह वाह, देखिए हमने रोशन की बात की, अब गोविंद जो है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर बोले वाले हो मेरी तरफ। मुझे ना रानी रूपमती फिल्म याद आ रही है।

0: एसएन त्रिपाठी का संगीत है, और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा हुआ फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया, मतवाली नार तुम।

0: है,
1: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है,
0: हाँ
1: है ना,
0: हाँ।
1: आपको याद था?
0: नहीं।
1: क्या प्यारा गाना याद दिलाया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं?
2: चंदन सावधान ने
1: आप गाओ
2: चंद

0: चितवन।
1: क्या बात क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
2: गोदान राजकुमार।
1: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
2: वाह, सही बात, सही
1: जो भोजपुरी शैली का गाना है।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू का बाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है।
1: यस यस,
0: मैं हूं ठुमरी तू है ख्याल, मतलब ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र किशन क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
2: मुझे कहते हैं

0: क्या बात है
1: मुकेश को याद करते हुए, ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता, एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं, लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं। तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है, मजरू साहब का ये गाना।
2: तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे

0: बात ही कर रहे हैं, मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं, जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था, और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, आर्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आर्ट के आर्टिस्ट शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला, मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी, जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की, और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के, सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो कि क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव
0: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तन्हाई में यहाँ लौट के आ
0: जाए।
2: मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
0: ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
0: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
1: मैं सीरियस जाता हूँ, एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना, भाई मैं भी सोच रहा था
0: तब तक ये
1: उनको ये गाना है
0: ये, लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में,
2: लग जा।

0: क्या बात है, देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना
1: चुना। लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात है, सकते हैं। वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है और बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सबको सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो नहीं सुनती, वो इसलिए शोज में भी नहीं आती, बोलती तुम भाई तो गाओगे, कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अच्छा। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा।
1: भी सुनो सुनो सुनो बिठा के सुनना पड़ता है, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून, जो बनी हुई ट्यून है, उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं। हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हुए, अगर इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेज हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के, और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया। कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूं कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं, तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम उन लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूं तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं, शो खत्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम, तो अब उसमें उन लोगों को डांस करना है, तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस करने में।
0: क्या मजेदार बात है, मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिंस आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
2: तो शायद ये नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो, थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
0: गोविंद, आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
1: मैं तो इसके खिलाफ हूं, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने हैं वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करूँ तो मतलब मेरा ऐसा मानना है या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल के, जो जनरेशन आजकल जो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वो गा भी रहे हैं, मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए वो, ये सब गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई,
0: आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है, और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: बिल्कुल, और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं और वो लोगों को

0: वो भी बहुत अच्छे लगते
1: बहुत अच्छे
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, है ना?
1: यस,
0: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
1: एग्जैक्टली सही बात है।
0: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
1: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए। क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है,
0: बिल्कुल
1: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो
0: जी,
1: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जाने कहाँ गए वो दिन।

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद, आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न

जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न

0: गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो गुजरात,
2: गुजरात में दामाद थे।
1: उनकी जो पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी सरल बेन के साथ।
2: जी जी जी जी,
0: देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
1: गुजराती गाने भी गाए,
0: गुजराती गाने भी।
2: और आज इनफेक्ट जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन।
1: हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत दिलचस्प बात है।
2: और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा।
1: हाँ मेरा ख्याल शायद कितनी
2: 46 में।
1: हाँ और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
2: 23 साल
1: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
2: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के।
1: तो फिर हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो गाएंगे।
2: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे,

0: तमें।
1: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में। बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है ना, वहां शोज भी उन्होंने काफी सारे किए। कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कॉम्पिटिशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान गायकों की अपनी अपनी जगह है।
2: एग्जैक्टली,
1: बिल्कुल, यस। अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
3: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता हूँ।
1: अरे बाबा, क्या बात है, जरूर।

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया,
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधरा, आईना हूँ मैं तेरा,

0: जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है, हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो,
1: आना जाना मुश्किल हो जाए
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई मरतबा ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना, या हाँ, हाँ। कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है, तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है, एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा, तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकंफर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चेंज किया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है, क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होकर जाना है।
0: बिल्कुल,
2: लोग सुनने के लिए आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मरतबा होता है।
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं?
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: मतलब मूड है कि नहीं
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद, हाँ, देखने हाँ, के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे,
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ मामला। गोविंद, आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ से कुछ कपड़े लेने के लिए, तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो? हाँ। अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले लें फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहट पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ, फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है,
2: क्या करें, किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज के इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, खासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है।

0: और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज़ है, अगर ये पुराने गाने आपने 2-3 घंटे सुन लिए तो अगले 1 साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
1: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुंह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूजिक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो 2.5-3 घंटे का 4 घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये 3-4 घंटे ममूस एरा में चले जाते हैं, वे एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है। वो 3 घंटे का रिलैक्स हमको अगले 1 हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
0: हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में, डेफिनेटली ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या ज़बरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर ला कर बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहाँ से मैं अपना ख़त्म करके जाए, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली इंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज़ के साथ है, अगर वो दिल से इसको इंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए, लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
2: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देखते हैं।
1: सबसे पहले तो अपना
0: मोबाइल म्यूट रखना चाहिए,
2: वो तो जरूरी
0: डेफिनेटली
2: वो तो जरूरी है।
0: और अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको इसको पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए,
1: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
0: एग्जैक्टली।
1: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत के लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
0: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारे पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ है, जिस गली में तेरा घर ना हो, बालमा हुआ।

0: पे हमें पांव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा।
1: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूँ जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा।
2: ऑलरेडी आप कर चुके हो।
0: कब से सोच रहा हूँ मैं।
1: अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
2: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना।
1: हाँ।
2: मैं

0: लो भाई गोविंद।
1: हाँ एच है। हाँ
2: हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिसके बाद

0: रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।

0: क्या प्यारी बात है। इसी स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं योगेश जी आए थे और उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे सुनाई थी। बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और देखिए मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेले अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल।

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया
1: यहां बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई आपका भी, विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी

दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत 2,20,00,000 के इनामी माओवादी कमांडर मिसर बिश्रा को धनबाद से गिरफ्तार किया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में 1,500,000 का इनामी मेहनत और एरिया कमांडर गौरव को भी दबोचा है। इनके पास से 3 AK-47 राइफल और 288 कारतूस मिले हैं। राज्य भर में आज संत गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर भाजपा द्वारा सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता महापर्व अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए रांची, जमशेदपुर और देवघर में प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने जा रही है। इन कैफेटेरिया में मोटे अनाज यानी श्री अन्न से बने स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन उपलब्ध होंगे। चतरा में आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के IG शैलेंद्र कुमार ने रामगढ़ और चतरा जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान IG ने दोनों जिलों की कानून व्यवस्था, उग्रवादी विरोधी अभियानों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रांची की महापौर रोशनी खलको ने आज ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: सिर्फ तुम्हारी कहानी और फिर हमने भी दिल का कहा न माना और चल पड़े तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ निभाने।

ये जिंदगी भी अजीब है। जिंदगी कभी सवाल बन जाती है जिसका जवाब हम भी खोज नहीं पाते कभी। कभी ये मुस्कुराहटों की चादर ओढ़कर बैठी रहती है तो कभी खामोशियों में आंसू छिपा लेती है। जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये नए नए मोड़ दिखा देती है। शायद जिंदगी का मकसद हर सवाल का जवाब देना नहीं बल्कि हर अनुभव से हमें थोड़ा और बेहतर इंसान बनाना है। इसीलिए कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना ही सबसे सही जवाब होता है। हम नहीं खोज पाते कुछ सवालों के जवाब।

ये दिल बड़ा अजीब है, ठगता है कभी कभी, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से रूठ जाता है, कभी खुशियों की पालकी पर सवार होकर उड़ जाता है आसमान में, तो कभी स्मृतियों की धूल में चुपचाप बिखर जाता है, कभी एक छोटी सी मुस्कान में पूरा आकाश समेट लेता है, कभी अनकहे शब्दों के बोझ तले निःशब्द हो जाता है, कभी भोर के ओस की पहली बूंद सा मुस्कुराने लगता है। शायद इसी का नाम दिल है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी लेकर, लेकिन कुछ रिश्ते तकदीर की स्याही से लिखे होते हैं। उनसे बचने की हर कोशिश हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी पर, लेकिन जब जिंदगी किसी खास शख्स से रूबरू कराती है तो इरादे पिघल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और दिल अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। तभी तो शायर ने कहा है, दिल पर मुश्किल बहुत है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना।

कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है, फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, तुझे चाहा। शायद यही तो प्रेम की सबसे सच्ची और मासूम परिभाषा है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है। यही सच्ची प्रेम की परिभाषा है।

लहरों से हमारा मन लहूलुहान भी होता है, कुछ दर्दीली स्मृतियां भी हमें सहलाती हैं कभी कभी, कुछ प्यारी स्मृतियां हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं कुछ यूं।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। सायंकालीन सभा में श्रोताओं, आपका स्वागत है।

अभी से कुछ ही समय बाद यानी शाम 5:35 पर महिलाओं अपना कार्यक्रम सुन सकेगी घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आज चर्चा होगी अरुणा आसफ अली का जीवन परिचय और साथ ही चर्चा में सुनेंगे बचत की आदत डाली। वार्ता में सुनेंगे कुटीर उद्योग से भविष्य निर्माण। वार्ताकार होंगे मीना चौरसिया। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 6:02 पर ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम सुनेंगे खेती बाड़ी। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मूंगफली की खेती में प्रबंधन और साथ ही चर्चा में सुनेंगे कम पूंजी में सागों की खेती। भेंटवार्ता में सुनेंगे एक केचुआ पालक से ली गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे सुरेश प्रसाद प्रजापति जोरकट पलामू से, इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। ग्रामीण सभा कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:30। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा में सुनेंगे महिलाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्र, साथ ही आज की बात में सुनेंगे दीदी बाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और वार्ता में सुनेंगे मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

सात बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 7:10 पर जिले में आजकल आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन सकेंगे एक रंग। 7:45 पर कल्याणी कार्यक्रम के अंतर्गत आज भेंटवार्ता में सुनेंगे अस्थमा कारण एवं उपचार। भेंटवार्ता करेंगे डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय और भेंटकर्ता होंगे श्री संजीव कुमार लाल। 8:00 हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे और 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से में सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे।

रात्रि के 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर छाया गीत आप सुन सकेंगे विविध भारती से और 10:00 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का। 11:00 हिंदी में समाचार सुन सकेंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। बहनों आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा, यानी अपने अपने गुरुओं के प्रति समर्पित ये दिन होता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने न केवल वेदों का संकलन किए बल्कि महाभारत की रचना की और भारतीय ज्ञान एवं परंपरा को नई दिशा भी दी। वैसे तो हमारे जो गुरु होते हैं वो प्रथम माता पिता ही होते हैं, लेकिन जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमें अच्छे संस्कार दे, सही मार्गदर्शन एवं दिशा दिखलाए, संस मार्ग पर ले चले, वो एक गुरु ही हो सकते हैं। और सही मायने में हमारे जीवन को सार्थक करने में उनका काफ़ी योगदान होता है। तो हम शत शत नमन करते हैं उन सभी गुरुओं को जो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। और वैसे देखा जाए बहनों तो आज का जो ये दिन है हमें याद दिलाता है एक बहुत ही वीर साहसी एवं क्रांतिकारी महिला की, जिनसे प्रेरणा लेकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और वो है, वैसे हम आज बहुत बातें करते हैं कि आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच रही हैं, परचम लहरा रही है, उनकी भागीदारी अब घरों से तक ही सीमित नहीं है। लेकिन जब बात आती है स्वतंत्रता सेनानी, हम बात कर रहे हैं बहनों उनकी, जिन्होंने आशफ अरुणा आशफ अली, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्रांति, हमारे जो देश स्वतंत्र हुए हैं उनकी भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे देखा जाए तो क्रांति की लड़ाई में सिर्फ पुरुष ही आगे नहीं थे बल्कि कई महिलाएं ऐसी थीं जिनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अरुणा आशफ अली सिर्फ शिक्षिका ही नहीं थी बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक भी थी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने मुंबई के ग्वालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। आज़ादी के बाद वह राजनीति में आई और 1958 में दिल्ली की मेयर नियुक्त हुई। उन्होंने एक मीडिया पब्लिशिंग हाउस की भी स्थापना की थी और उनका एक परिचय ये भी हम जान सकते हैं कि अरुणा आशफ अली अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत की पत्नी भी थी। अरुणा आशफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को पंजाब के कालका नाम के स्थान पर हुआ था और एक बंगाली परिवार में हुआ था। और ब्राह्मण परिवार में जन्मी अरुणा जी, उनका अरुणा गांगुली नाम रखा गया था। स्कूली पढ़ाई नैनीताल से पूरी करने के बाद अरुणा ने लाहौर से आगे शिक्षा हासिल की और वे बचपन से कुशाग्र बुद्धि और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अरुणा शिक्षिका बन गई और कोलकाता के गो

क्ले मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाने लगी। बाद में अरुणा ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और 1930, 1932 और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल गईं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अरुणा आशफ अली जी ने भाग लिया और अगले ही दिन ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनकी जो भागीदारी थी वो काफ़ी बढ़ चढ़ के थी उनकी, और हम उनसे काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि ऐसी महिलाएं भी थी जो अपने साहस के बल पर बहुत कुछ कर दिखाया। तो चलिए बहनों, इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: कुटीर उद्योग एक छोटा विनिर्माण व्यवसाय है जो आमतौर पर घर में संचालित होता है। इसमें श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन होता है। ये उद्योग विश्व भर के ग्रामीण क्षेत्रों में आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और देशों में समुदायों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। कुटीर उद्योग से तात्पर्य एक छोटे पैमाने के उत्पादन कार्य से है जिसे आमतौर पर निजी घर से प्रबंधित किया जाता है, जिसका उद्देश्य कई कारखानों की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक या रचनात्मक रूप से वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के घर आधारित व्यवसाय है जो न्यूनतम प्रारंभिक लागत के साथ श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विकासशील देशों में कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में आय का अवसर प्रदान करके एक महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग अक्सर उच्च गुणवत्ता वाले हस्तनिर्मित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी विशिष्ट बाजारों की जरूरतों को पूरा करते हैं। कुटीर उद्योग के विकास से सामुदायिक रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन उन्हें बड़े निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुटीर उद्योगों में कम लागत और प्रवेश बाधाएँ होती हैं, लेकिन इनका विस्तार आमतौर पर सीमित रहता है क्योंकि पारंपरिक व्यवसायों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अमेरिका और यूरोप में पहले कुटीर उद्योग हल्के विनिर्माण कार्य करते थे जो ठेके पर काम करते थे, जिनको वस्त्र निर्माण और कपड़ा सिलाई, जूते बनाना और छोटे पुर्जे बनाना शामिल थे। ये कुटीर उद्योग में तैयार माल का उत्पादन करते थे जिसमें अक्सर ठेकेदार आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे माल का उपयोग किया जाता था। विकसित देशों में कारखानों में संचालित होने वाले कई समकालीन उद्योगों ने औद्योगिक क्रांति से पहले फल फूल रहे कुटीर उद्योग का स्थान ले लिया। आधुनिक कुटीर उद्योग ऐसे उपभोक्ता बाजार की जरूरतों को पूरा करते हैं जो बड़े पैमाने पर उत्पादित नामी ग्रामी ब्रांडों के उत्पादों को विकल्प के रूप में मालिक हस्तनिर्मित उत्पादों की तलाश करते हैं। इनमें कपड़े और कालीन से लेकर शहद मसाले तक सब कुछ शामिल है। को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और इन्हें शुरू करने के लिए छोटे निवेश की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों को सफल कुटीर उद्योग की स्थापना में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है, जहां जीवन यापन की लागत कम होने के कारण श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन प्रतिस्पर्धी कीमतों पर करना संभव है, जिसमें छोटे व्यवसाय उचित लाभ कमा सकते हैं। कुछ कुटीर उद्योग समय के साथ बढ़ते हैं और समुदाय के अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। उनके उत्पाद आमतौर पर पारंपरिक औजारों से हस्तनिर्मित होते हैं, इसलिए वे बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं की मात्रा के बराबर नहीं हो सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किसान अक्सर ऑफ सीजन के दौरान आय के लिए कुटीर उद्योगों पर निर्भर रहते हैं। स्थानीय और निर्यात बाजारों के लिए हस्तशिल्प बनाने के लिए निवासियों के सहयोग से ग्राम कुटीर उद्योग का विस्तार हो सकता है। कुटीर उद्योग तभी फल फूल सकते हैं जब संचालक विशिष्ट बाजारों में छोटे स्तर पर बने रहने का विकल्प चुने, जिससे एक ही परिवार का लाभ हो। व्यवसाय में वृद्धि संभव है, लेकिन इसके एक महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं। एक कुशल और मूल्यवान व्यक्ति द्वारा न्यूनतम पारंपरिक लागत के साथ एक कुटीर उद्योग को स्थापना की जा सकती है। इसमें केवल बुनियादी ढांचा की आवश्यकता है। व्यवसाय संचालक को ऑर्डर प्राप्त करने, आपूर्ति प्राप्त करने और अंतिम उत्पाद खरीदारों तक पहुंचाने का साधन चाहिए। मोबाइल तकनीक ने कुटीर उद्योग के संचालन की क्षमता में काफ़ी सुधार किया है। आधुनिक युग में कुटीर उद्योग दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सफल कुटीर उद्योग अक्सर उन उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं जो बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं की तुलना में हस्तशिल्प को प्राथमिकता देते हैं। कुछ अन्य लोग विशिष्ट कारीगरी वाली वस्तुओं की तलाश करते हैं। कुछ कुटीर उद्योग ऐसे विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका निर्माण आर्थिक रूप से संभव नहीं होता, जैसे कि उत्तम संगीत वाद्य यंत्र, नाट्य वेशभूषा और धातु शिल्प। भारत की अर्थव्यवस्थाओं में कुटीर उद्योग के उत्पादों के बाजार का अधिकतम हिस्सा अनूठे उत्पादों की मांग से प्रेरित होता है। कुटीर उद्योग संभवतः दूरस्थ कार्य प्रणाली का मूल स्रोत है। कुटीर उद्योग विकासशील और विकसित दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छोटे पैमाने के व्यवसाय आय के आवश्यक अवसर प्रदान करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार सीमित है। आधुनिक तकनीकी प्रगति के बावजूद कुटीर उद्योग उच्च गुणवत्ता वाले हस्तनिर्मित उत्पाद करते हैं जो विशिष्ट बाजार में मांगों को पूरा करते हैं, और इनकी लचीलता और कम आरंभिक लागत इन्हें व्यक्तियों और परिवारों के लिए सुलभ बनाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करना चुनौतियां पेश करता है, लेकिन कुटीर उद्योगों की अनूठी कारीगरी कई उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बनी हुई है। कुटीर उद्योग दूरस्थ कार्य प्रणाली का स्रोत थे। औद्योगिक क्रांति से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए इन्होंने ऊन कातना, चमड़ा तैयार करना और कपड़े सिलना जैसे श्रम प्रधान कार्यों से जीविका कमाने का मार्ग प्रशस्त किया। यह चलन पूरी दुनिया में है, जहां कई कारीगर पारंपरिक स्थानीय कौशलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत के प्रमुख कुटीर उद्योग में रेशम बुनाई, कालीन निर्माण, चमड़े का काम, धातु का काम, विशेष खाद्य प्रसंस्करण शामिल है।
1: बहनों, अभी आप सुन रहे हैं वार्ता कुटीर उद्योग में भविष्य निर्माण, इस पर जानकारी दे रही थी मीना चौरसिया। और चलिए इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में कथित शराब घोटाला और उत्पाद नीति में अनियमितताओं को लेकर एसीबी की कार्रवाई तेज हो गई है। एसीबी ने टेंडर प्रक्रियाओं और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में राज्य के 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी किया है। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने खाद और बीज बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया और डीएपी बेचने की शिकायतों की जांच की। उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को सभी गोदामों की सघन जांच करने और मुनाफाखोरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। रांची के लोअर बाजार थाना में आयोजित जन शिकायत समाधान शिविर में आज वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। एसएसपी ने अधिकारियों को पीड़ितों की जमीन विवाद, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा के मिहिजाम में कानगोई पत्थर डंप के पास फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वसूली करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वसीम राजा ने बताया कि आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 2 वॉकी टॉकी, 2 चाकू और जैप 5 का फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुआ है। सिमडेगा जिले के रेंगारी में एक युवक ने लाठी से पीटकर अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक एक्शन मेंज ने शराब के नशे में घरेलू विवाद के दौरान अपने पिता पर हमला कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। 135वें डूरंड का फुटबॉल टूर्नामेंट के रांची चरण में आज दूसरा मुकाबला इंडियन एयरफोर्स एफटी और श्रीलंका की डिफेंडर्स एफटी के बीच शाम 7 बजे बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इस रोमांचक मैच के लिए स्थानीय दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे तो हमारे जो भी किसान भाई हैं एक बहादुर सिपाही होते हैं, ठीक एक सैनिक की भांति हमेशा अपने खेतों में डटे होते हैं। मौसम चाहे जितनी भी विपरीत हो वे अपनी पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ काम करते रहते हैं। अभी किसान भाई धान की जो खेती में लगे हुए हैं उसकी बुआई नर्सरी लगाना कुड़ाई वगैरह वगैरह में, और इसके बाद लगेंगे मूंगफली की खेती में, क्योंकि मूंगफली की खेती हमारे यहाँ बृहद पैमाने पे होती है। तो चलिए आज हम कुछ बातें करेंगे कि मूंगफली की खेती में समुचित प्रबंधन कैसे हो। तो मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है हमारे यहाँ श्रोताओं, और जो कम लागत में बहुत ही अच्छी आय देने वाला ये नगदी फसल होता है। यदि किसान वैज्ञानिक तरीका अपनाएं तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हो सकती है। सबसे पहले हम बात करें खेतों की कि खेत की चयन किस प्रकार से करनी चाहिए। तो मूंगफली के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जहां पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो, क्योंकि इससे जड़ और फलियां जो है वो सड़ने लगती हैं और इसमें जो है इसे समस्या बढ़ सकती है किसानों के लिए। तो खेत की अच्छी तरह से 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए और पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। अब हम बातें करेंगे उन्नत किस्मों की। अपने क्षेत्र और मौसम के अनुसार हमारे किसान भाई उन्नत और रोग रोधी किस्मों का चयन कर सकते हैं। और ध्यान रहे श्रोताओं कि जब भी बीज का उपयोग करते हैं तो प्रमाणित बीज का ही

0: चयन करें जिससे कि अंकुरण क्षमता अच्छी होगी, स्वस्थ फल लगेंगे और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। बीज को फफूंदनाशी दवा से तथा राइजोबियम और पीएसबी कल्चर से उपचारित करने के बाद ही लगाएं तो उससे अच्छा उत्पादन मिलेगा, रोग कम लगेंगे और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बेहतर तरीके से हो पाएगा। बुआई समय पर कर लेना चाहिए। खरीफ मौसम में मानसून की पहली जुताई वर्षा के बाद बुआई करना लाभदायक रहता है। उचित दूरी बनाए रखें, पौधे को पर्याप्त धूप और हवा मिलनी चाहिए इस बात का भी ध्यान रखें, और रोगों का प्रकोप जिससे कि कम से कम होगा। जब पौधे में धूप लगेंगी, हवा लगेंगी तो इस पर निश्चय ही रोगों का आक्रमण कम हो पाएगा। पोषक तत्व का प्रबंधन करना भी बहुत ही आवश्यक है श्रोताओं। मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें, और जब जिस मात्रा में डालनी हो उर्वरक उतनी ही मात्रा में डालें। गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद भी अवश्य डालें खेतों में। फास्फोरस और पोटास का संतुलित उपयोग करें, और जिन क्षेत्रों में कैल्शियम या जिप्सम की कमी हो वहाँ पे जिप्सम का प्रयोग करें, जिससे कि फलियों का विकास अच्छा होगा और दाने अच्छे मिलेंगे। सिंचाई प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि वर्षा कम होने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। विशेष रूप से फूल आने पर और फलियां बनने के समय नमी के कमी नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्यान रहे कि नमी बरकरार होनी चाहिए। लेकिन खेतों में पानी न भरने पाए इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है, और समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करना भी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बुआई के 20 से 25 दिन के अंत होते होते पौधे में खरपतवार भी निकल आते हैं, जिनकी पहली निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए और आवश्यकता होने पर दूसरी गुड़ाई भी कर सकते हैं। इससे खरपतवार नियंत्रित होते हैं और पौधे की जड़ों का विकास है वो बेहतर तरीके से हो पाता है। अब हम बातें करेंगे रोग एवं कीट प्रबंधन की। तो मूंगफली में पत्ती खाने वाले इल्ली, माहू, सफ़ेद लड़ तथा टिक्का रोग और रस्ट जैसी समस्याएँ मुख्यतः पाई जाती हैं। तो किसान भाई जो हैं उन्हें नियमित रूप से अपने खेतों का निरीक्षण करते रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार के यदि लक्षण दिखाई दे कीट या रोग का तो फिर उन्हें अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह ले सकते हैं, और अनुशंसित दवाओं का प्रयोग समय पर अवश्य कर लें, जिससे कि कीट समय पर कीटों पर या रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। फसल के समय पर खुदाई करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब अधिकांश पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फलियां पूरी तरह से विकसित हो जाए तब खुदाई करनी चाहिए। खुदाई के बाद फलियों को अच्छी तरह से सुखा कर ही भंडारण करें। भंडारण के समय नमी कम होनी चाहिए ताकि फफूंद और कीटों से उसे बचाया जा सके। तो किसान भाई ध्यान दें कि यदि जब भी आप मूंगफली की खेती कर रहे हों तो उसके अच्छे किस्म, बीज उपचार, संतुलित पोषण और समय पर सिंचाई, समय पर खरपतवार नियंत्रण और कीट रोगों का समुचित प्रबंधन समय पर हो जानी चाहिए, तभी आपको मूंगफली के फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकेंगे और आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। एक केचुआ पालक से बातचीत करेंगे संतोष कुमार। भेंट वार्ताकार है सुरेश प्रसाद प्रजापति जोरकट पलामू से। ताई सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। ग्रामीण भाइयों, आज हम बातें करेंगे केचुआ खाद उत्पादन की। किस प्रकार हम केचुआ खाद उत्पादन करें, नई नई तकनीकियाँ उतारी जा रही हैं केचुआ खाद उत्पादन के लिए, और अगर केचुआ खाद हम उत्पादित करते हैं तो ये एक स्वरोजगार का माध्यम बनता है, हम बेहतर मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं इससे। और इससे संबंधित जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के जोरकट गाँव के एक कृषक सुरेश प्रजापति। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं सभी किसान भाई बंधुओं श्रोता को प्रणाम करता हूँ और आप लोग को जो मैं केचुआ खाद अपनाया हूँ उससे संबंधित जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी मेरे जैसा अच्छे ढंग से खाद का उत्पादन करेंगे और जैविक फसल उपजाकर आत्मसंतुष्ट प्राप्त करेंगे।
1: कैसे जैविक खेती आप करते हैं, मैंने कैसे केचुआ खाद का उत्पादन कैसे आप करते हैं पहले ये बताएं।
2: केचुआ खाद का उत्पादन हमने पक्का का टंकी बनवा लिया है, ऐसे तो प्लास्टिक का भी बनता है, एक तरफ ढाल होता है और उसमें नीचे

0: फीट का लेयर बनाते हैं।
1: तो उसमें जो है सो आपका 1.5 फीट तक हम लोग ऊंचाइया तक भरते हैं, और उसमें लंबा 10 फीट 15 फीट का भी टंकी हो सकता है, 5 फीट का हो सकता है। अगर छोटा किसान है पहले शुरू स्तर पर जब करना चाह रहे हैं तो प्लास्टिक पर भी कर सकते हैं, ज़मीन को एक तरफ से ऊंचा कर देंगे एक तरफ से नीचा ढाल बना देंगे, ताकि उसे पानी जो निकलता है वो बर्मी वास कहलाता है, और उसमें देखना है कि इतना ही पानी देना है कि उसमें गर्मी पैदा न हो, एकदम नमी होना चाहिए ताकि केचुए चल सके, और नहीं तो अगर कम पानी पड़ा तो आपके केचुआ भाप से मर सकता है, और उससे जो बूंद बूंद करके जो पानी निकलेगा वो बर्मी वास हो जाएगा। उसको हम लोग फसल पर भी जैसे मीरा कुलान जो छिड़काव करते हैं ना, तो उस तरह से उसको हम लोग छिड़काव भी कर सकते हैं, पौधा के जड़ में भी दे सकते हैं, और इससे पौधा के जो गुणवत्ता है ना फसल में वो हमको बहुत अच्छा मिलता है। जैसे अगर हम लोग धान लगाए हैं तो उसका भात जो है सो आपका स्वादिष्ट लगेगा, वो जल्दी सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा।
0: अच्छा, एक लेयर जो बिछाते हैं, पहले पहले क्या बिछाते हैं, सबसे पहले क्या बिछाते हैं, फिर क्या बिछाते हैं, वो कितने फीट का होना चाहिए, ऐसे समझाइए।
1: देखिए 6 इंची मोटा जो है सो पुराना पत्ता डाल देते हैं, ये कोई नई पत्ता नहीं पुराना, उसके बाद उस पर 6 इंची मोटा हम गोबर का तह डालते हैं, जो अधसड़ा है उसी को डालते हैं, कोई नया गोबर को नहीं डालते हैं, इसलिए कि उसमें गर्मी होता है, और उसी में और केचुआ को जो है सो छोड़ा जाता है। फिर इसी तरह से फिर उसके बाद पत्ता को डालेंगे, है ना, फिर पत्ता को डालेंगे, फिर 6 इंची आपका जो है सो गोबर अच्छा डालेंगे, और लास्ट इस तरह से 2-3 लेयर करने के बाद जब 1.5 फीट तक आ जाता है ना, तो हम लोग जूट के बोरा से ऊपर ढक देते हैं, ढक देते हैं, और ऊपर से आपका छाया भी रहता है, ताकि उसमें ऊपर से ज़्यादा बारिश हो तो बर्बाद ना हो, पानी बाहर निकल जाता है, जैसे कि उसमें आप छाया प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास अगर टीना का शेड हो चाहे करकट का हो तो वही हिसाब से किया जाता है, जितना लागत जिसको हो उतना हिसाब से कर लेता है आदमी।
0: और ये कब से कर रहे हैं आप?
1: ये 2006 से कर रहे हैं और आज तक भी मेरा चालू है सो चालू है,
0: कितना
1: इसलिए
0: उत्पादित कर लेते हैं?
1: देखिए पिछले साल तो जो है सो 70 क्विंटल सेल हुआ था, इस वर्ष जो है सो अभी लगातार जो बारिश हुआ ना सो मैंने हम 10 क्विंटल भर मैंने सेल किए हैं,
0: ओ, ज़्यादा नहीं हो पाया।
1: नहीं हो पाया, अभी मैंने खाद पड़ा हुआ है, और अब जो है सो धीरे धीरे सेल हो रहा है।
0: अब कैसे किलो बेचते हैं इसको?
1: केचुआ खाद के रेट मैंने 10 रुपये किलो है, और अगर कभी मार्केट में टान होने लगा तो लोग वैसे भी पैसा देते हैं, लेकिन 10 रुपये रेट है। वैसा कभी देखते हैं कि किसान अगर जो जागरूक नहीं है तो उन्हें मैंने कम पैसा में भी हम देना शुरू करते हैं, कि ताकि लोग किसान इससे लाभ प्राप्त कर सके और अपना इस कार्यक्रम को आगे सीख भी सके, कि अपने यहाँ बना भी सके और अपना मुनाफा भी कमा सके,
0: अच्छा,
1: सेल
0: ये
1: भी।
0: वर्मी वास्प जो बात आती है उसको कैसे निकालते हैं आप?
1: बर्मीवास एक तरह जो ढलान रहता है ना वहाँ पाइप नीचे लगाया हुआ रहता है, अगर प्लास्टिक का है तो नीचे पाइप लगाया हुआ है, और उसी पाइप से मैंने टप टप करके जो पानी निकलता है, अगर छोटा स्तर पर है तो
0: तो
1: बाल
0: उसमें पानी देते होंगे तब ना निकलेगा।
1: हाँ ऊपर से पानी जैसे कि हम लोग छींटते हैं आपका जो पानी ये फसल को जो है सो हम लोग छोटा स्तर पर जैसे कि दवा जो छींटते हैं ना, तो उसी तरह से एक झरना होता है और उसी से हम लोग धीरे धीरे पानी देते हैं, ताकि सगर पानी मिल जाए, यही हिसाब है, और वही पानी जो है सो धीरे धीरे निकलना शुरू होता है, तो वही मेरा बर्मी वास हो गया। उसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं फसल अगर ज़्यादा कमज़ोर है तो 2 भाग पानी एक ही बर्मी कंपोस्ट, और कहीं देखते हैं कि अच्छा फसल है तो उसमें चार गुना पानी देते हैं, देखते हैं कि किस हिसाब से

0: खेत में ताकत है वही हिसाब से देना शुरू करते हैं, एक बार पहले ट्राई कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि खेत में ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा और हम दे देंगे तो पौधा जल भी सकता है, तो वही हिसाब से दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: और नहीं तो ज़्यादा अगर दे दीजिएगा तो पौधा को तो जला भी देगा, तो वही हिसाब से ट्राई करने के बाद ही देते हैं। पहले कमे देते हैं मात्रा में कि पौधा अगर नहीं चला तो 8 दिन के बाद फिर उसमें देना शुरू करते हैं।
1: अच्छा,
0: यही हिसाब है।
1: अच्छा,
0: जैविक से ज़्यादा मुनाफा आपको शुद्ध प्राप्ति जो होता है ना आपका फसल, तो वो सबसे अच्छा है कि आपको शरीर आपका मजबूत रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और आपका दिमाग सही संतुलन में रहेगा।
1: इसको किस किस फसलों में डालना उचित होता है?
0: इसमें जो है सो केचुआ खाद जितना दुनिया का वनस्पति है, जो भी साग सब्जी फसल है, पेड़ पौधा है, सब में डाल सकते हैं। इसलिए कि केचुआ जो है ना जमीन को भुरभुरा बनाए रखता है और जो भी पानी होता है उसको रिचार्ज करता है, पहला नंबर की जल बचा देता है। इस तरह से मेरा जल का बचाव पहला नंबर में होता है। और दूसरा नंबर कि पौधा का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है।
1: अच्छा,
0: किसी भी पौधा लगाए हुए हैं
1: उसका मात्रा कितना है, मतलब ज़्यादा देने से भी हानिकारक हो जाता है?
0: हाँ, हानिकारक हो जाता है। मात्रा है कि आप जैसे कि 1 मीटर लंबा चौड़ा है तो उसमें आप 1 किलो 1.5 किलो दे के देखिए कि आपका फसल अगर उसमें अच्छा ढंग से चल गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर मात्रा को बढ़ाइए। ये बात है,
1: मतलब सोच समझ कर इसका इस्तेमाल।
0: हाँ हाँ, सोच समझ कर।
1: और इसकी बिक्री भी अच्छी खासी हो जाती है?
0: हाँ, बिक्री तो मैंने जो हमारा टाउन के किसान लोग इधर नज़दीक में हैं, जैसे कि खामडी एरिया के लोग ले जाया करते हैं, अभी जो है सो कोको पेटी भरेंगे उसमें पौधा का उपार्जन करेंगे उसमें लेने वाले हैं, और ऐसे टाउन में भी मेरा सेल होते रहता है। और जो किसान आए अपना देखे कि नया है तो उनको कुछ प्राथमिकता दे देते हैं कि 10 रुपये नहीं, कुछ कमों में ले जाइए, आप पहले सीख तो लीजिए कि इससे सूधी है कि नहीं।
1: अच्छा, और अगर हमारे ग्रामीण बंधु स्वरोजगार के रूप में इसे अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक लाभदायक व्यवसाय है, क्योंकि कम से कम तो आपने कैसे बताया, कैसे किलो बताया?
0: 10 रुपये किलो।
1: 10 रुपये किलो, कम से कम तो 10 रुपये किलो बिक्री आप करते हैं।
0: जी हाँ, मिलता नहीं है यहाँ पर खाद, बहुत हाँ, कम मिलता है।
1: इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आप लाते कहाँ से हैं केचुआ?
0: केचुआ तो हम रामकृष्ण मिशन रांची से लाए हुए हैं।
1: अच्छा,
0: और वही मेरा केचुआ चल रहा है, आइसिना फोर्टिडा है, जो गुलाबी कलर का होता है, 3 इंच तक लंबा होता है।
1: उसी से?
0: हाँ, वही मेरा चल रहा है।
1: आप थे पलामू जिला के जोरकट गाँव के एक सफल कृषक जो केचुआ खाद उत्पादन वर्षों से कर रहे हैं आप, और आप बिक्री भी करते हैं केचुआ खाद, आपको बहुत अच्छी जानकारी है केचुआ खाद के बारे में। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और केचुआ खाद उत्पादन से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी केचुआ पालक सुरेश प्रसाद प्रजापति से बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और श्रोता, अब हम बातें करेंगे धान फसल की। धान फसल में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का क्या महत्व है? तो हम बता दें श्रोताओं कि धान में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्व होता है। धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण उपाय भी है, जिसमें रासायनिक अनाज, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैविक अनाज इत्यादि, हरी नीले शैवाल इत्यादि जो है, हरी खाद इत्यादि का उपयोग शामिल है। तो धान के उत्पादन में मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास, ये सब भी होते हैं, और इसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो बहुत ही अच्छा प्रबंधन है धान के लिए। और जब हम धान के खेतों में बात करते हैं कि किस मात्रा में डालनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को रासायनिक खाद, तो फिर इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि सबसे पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा लें, तत्पश्चात

जान लें कि किस मिट्टी में कितने उर्वरक की उसमें आवश्यकता है, उसके बाद ही उस मात्रा में पोषक तत्व डालें। और यदि हम बातें करते हैं धान फसल के लिए 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन होनी चाहिए, 50 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर फास्फोरस होनी चाहिए और 30 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर पोटास की मात्रा होनी चाहिए। साथ में सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 10 से 12 टन प्रति एकड़ होनी चाहिए। लेकिन यदि हम बातें करते हैं नाइट्रोजन की, तो यूरिया नाइट्रोजन का सर्वाधिक स्रोत, अच्छा स्रोत होता है श्रोताओं। और यूरिया से प्राप्त होने वाली नाइट्रोजन की बर्बादी को कम करने के लिए यूरिया की संपूर्ण मात्रा को धान की फसल में 3 बार इसे प्रयोग में लानी चाहिए, जिसमें कि यूरिया की पहली मात्रा 1/3 और के रूप में डालनी चाहिए और जिसमें कि वो रोपाई के पहले ही उसे मिलाया जाता है खेतों में और मृदा को नाइट्रोजन से प्राप्त हो सकता है। इसके बाद दूसरे जो मात्रा है वो कल्ले फूटने के समय डालनी चाहिए, यानी टॉप ड्रेसिंग के समय में दूसरी इसकी जो मात्रा है वो डालनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि टॉप ड्रेसिंग के समय खेत में पानी का जो जमा हो तो उसे पूरी तरह से निकासी कर देना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे के उपरांत ही खेत में पानी भी फिर से भर देना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग से उपज में वृद्धि होती है और यूरिया की तीसरी मात्रा अर्थात शेष भाग पुष्प आने के 1 सप्ताह पूर्व में डालनी चाहिए। इससे धान की बारियों में अच्छी दाने निकलते हैं, उसकी मोटाई बढ़ती है और उसके गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। यदि हम बात करें फास्फोरस की, तो धान की अच्छी उपज लेने के लिए फास्फोरस का उपयोग भी बहुत ही आवश्यक है। सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग किया जाता है मृदा में मिलाने के लिए और फास्फोरस धीरे धीरे पौधों की जड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो जड़ों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसी प्रकार से पोटास की मात्रा भी होनी चाहिए, धान की फसल में 40 से 50 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। काली एवं भारी मृदा में पोटास की मात्रा जो है एक साथ डालनी चाहिए और पोटास आवश्यकता अनुसार डालने से इससे भी उत्पादन में वृद्धि होती है। यदि मृदा में जस्ते की कमी हो तो जस्ते की कमी के लिए उसमें कल्ले फूटने के लिए, पौधे में असमान वृद्धि के लिए, साथ ही साथ उसमें रोग से बचाने के लिए पौधे में जस्ते का प्रयोग भी जरूरी होता है। जस्ते की कमी से कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं धान में, जैसे कि पत्तियां जो है अपेक्षाकृत संकरा हो सकती हैं या उसमें दाने कम लग सकते हैं। तो मृदा में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट की मात्रा को जो है प्रति हेक्टेयर में 25 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग करना उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि आवश्यकता अनुसार धान में पोषक तत्वों की जो भी कमी है उसे की पूर्ति जरूर करें और समय रहते उसी प्रकार से आप आयरन की पूर्ति भी कर सकते हैं, गंधक की पूर्ति भी कर सकते हैं, यानी जब जिस चीज़ की उसमें कमी दिखाई दे तो उसमें ऊपर से डालनी चाहिए। और हरी नील शैवाल का उपयोग करने से भी काफ़ी फायदा होता है, धान के फसल को अपेक्षाकृत अधिक उसमें वृद्धि होती है और साथ ही इसमें दाने अधिक निकलते हैं और अधिक उत्पादन भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि समय पर उर्वरक का प्रयोग करते रहें और साथ साथ में खरपतवार नियंत्रण भी करते रहे, तभी अच्छा उत्पादन उन्हें मिल पाएगा। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा को, और इसी लोकगीत के साथ अब समय हो चला है कि हम आपसे ले इजाज़त कार्यक्रम खेती बाड़ी से। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में।

वैसे तो हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है, इसीलिए महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि वे उनसे जुड़कर अपना विकास कर सकें, अपने परिवार और समाज के विकास में भागीदारी बन सकें। हम आज एक ऐसे ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की बात करेंगे, दीदी बाड़ी कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो बहनों, दीदी बाड़ी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और विशेष रूप से आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत घर के आसपास उपलब्ध खाली भूमि, आंगन में पोषण वाटिका, यानी हम जिसे किचन गार्डन कहते हैं आज के समय में, तो वही विकसित करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि परिवार को पूरे वर्ष भर ताजी सब्जी, पौष्टिक और संतुलित आहार उन्हें उपलब्ध हो सके और इसका लाभ वे ले सकें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है परिवार को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है बहनों कि परिवार के प्रत्येक सदस्य, विशेषकर महिलाएं और बच्चे को ताजी हरी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध हो। आज हम देख सकते हैं कि हमारे देश में किस कदर से हमारे जो ग्रामीण, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और कुपोषण के शिकार से कई तरह के गंभीर बीमारियां उन्हें जकड़ लेती हैं और यहाँ तक कि जानलेवा भी साबित होती हैं। तो इन सब से बचने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ताकि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को तो विशेष कर ध्यान देनी चाहिए उन्हें खान पान पर, क्योंकि जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तो फिर उन्हें और अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि उन गर्भ में पल रहे बच्चे हिस्ट पुष्ट हो सके और स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाएं अपने सेहत के लिए पहले से ही खान पान पर ध्यान दें। तो इसी सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आज उन्हें जागरूक किया जाता है कि वे अपने घरों में ही, अपने घरों के आसपास वे हरी ताजी सब्जियां उगाएं और इसका लाभ सिर्फ वही नहीं, घर के सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और एनीमिया, कुपोषण जैसे जो आज जूझ रही हैं महिलाएं, उससे बच सके। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सब्जी उत्पादन करना, बीज संरक्षण, जैविक खाद बनाना और बागवानी का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और उनका आत्मविश्वास जो है वह बढ़ सके और अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को वो मजबूत बना सके। घर की आवश्यकताओं से अधिक अगर सब्जियां वे उगाती हैं तो अपने स्थानीय बाज़ारों में बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ अपने लिए ही उत्पादन करना है सब्जियों का, बल्कि इसके अलावा वे इतना उत्पादन कर सके जिसे बेचकर वे इसे आय की प्राप्ति भी कर सके और जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी भी हो सके। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है महिलाओं के लिए कि वे जब आत्मनिर्भर बनती हैं तो फिर उन्हें अपने घर के जो घर की स्थिति सुदृढ़ होती है और इससे उनका मनोबल भी बढ़ता है। दीदी बाड़ी कार्यक्रम में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और अन्य जैविक तरीकों से खेती करने को, यानी कि बागवानी करने को उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे और जो भी इससे उत्पादित उन्हें उत्पादन मिलेंगे फल सब्जियों की, वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होंगे और काफ़ी पौष्टिक भी होंगे और इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण भी उनका एक प्रकार से सहयोग हो पाएगा। घर के आसपास की खाली पड़ी भूमि, आंगन, छोटे स्थान जहाँ की सब्जियाँ आसानी से उगाई जा सके, और आजकल तो हम देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से इसके प्रति लोगों का रुझान हो रहा है। लोग अपने छत, घर के छतों पर भी किस प्रकार से

पूरे छत को ही बगान में परिवर्तित करते रहे हैं। और जब सचमुच में अपने मेहनत के द्वारा जो फल सब्जियां उगाई जाती हैं वो तो कई गुना बाजारों से अधिक पौष्टिक भी होती हैं, और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ा सुकून और खुशी भी देती है। जब अपने मेहनत क्या हुआ, जब फल सब्जियां हम खाते हैं तो सचमुच में ये काफ़ी पौष्टिक भी होता है और काफ़ी खुशी का देने वाला ये समय भी होता है। तो इस प्रकार से जो बहनों को और आगे उससे और आगे बढ़कर उन्हें उत्पादित करने को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से जब एक बार जुड़ जाती है ना, तो फिर उसे और आगे बढ़ने के लिए वो खुद ब खुद सोचने लगती है। और यदि घर के आसपास थोड़ी बहुत भी खाली भूमि हो, या छोटा सा भी आंगन हो, या फिर गमले में भी आप आसानी से हरी साग सब्जियाँ उगा सकती हैं। और जब आसपास साग सब्जियां लगती हैं, फूल पौधे लगते हैं, तो हरियाली देखकर सचमुच में मन जो है वो झूम उठता है। और ये एक स्वच्छ वातावरण बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है बहनों का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दीदी बाड़ी जो कार्यक्रम है वो केवल एक बागवानी योजना नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, परिवार के प्रति बेहतर पोषण, अतिरिक्त आय, जैविक खेती और ग्रामीण विकास में सहयोग भी देना है। तो निश्चय ही ये जो पहल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है हमारी बहनों के लिए, और इसका लाभ हमारी बहनों को ज़रूर लेनी चाहिए। तो चलिए बहनों, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण, भेंट वार्ताकार होंगे कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र जियाकी से डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, और इनसे बातचीत करेंगी संतोष कुमार।

0: ये बताया जाए कि मृदा की जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो क्षीण होती जा रही है, उर्वरा शक्ति जो कम होती जा रही है, साथ ही जल धारण क्षमता जिसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है, हमारे किसान भाई इसका निदान कैसे करें?
1: किसान भाई, सबसे पहले तो हमारे प्रकृति के द्वारा जो है मिट्टी और जल का जो प्राकृतिक संसाधन जो मिला हुआ है, ये जो है अनमोल है। इसको सिर्फ इसकी रक्षा की जा सकती है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, इसका उत्पादन नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ये जो है हमारे प्रकृति में बहुताय में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसके जो है गुणवत्ता और इसके जो है उपयोग में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई जाती है, जिसके चलते जो है इसमें भारी कमी आई है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षीण होने का एक प्रमुख कारण है कि जैसे बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जो है पानी बहता है, तो पानी के साथ साथ हमारी मिट्टी भी बह जाती है। हमारी उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की जो है 20 से 25 सेंटीमीटर तक ही उर्वरा शक्ति रहती है, और उसके नीचे की मिट्टी जो है वो सही नहीं होती है, वो खेती करने योग्य नहीं होती है। इसलिए उसका जो है संरक्षण करना, उस मिट्टी को, जल के साथ साथ मिट्टी को भी बचाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए तरह तरह की उपाय जो है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को बताते हैं, और आज उसी पर हमको विशेष चर्चा करनी है।
0: जी हाँ, और वो प्रमुख तकनीकियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं?
1: वो प्रमुख तकनीकी जो है किसान जो है सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो खेत हमारे हैं वो यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत है।
0: जी जी।
1: और उसमें जो है किसान जो है वो सबसे पहले जो है कंटूर फार्मिंग करेंगे, जैसे खेत की जुताई करते हैं तो जैसे करते हैं वैसे ही करें, लेकिन जो अंतिम जुताई उसकी करें वो जो है वो स्लोप के विपरीत करें।
0: अच्छा।
1: स्लोप के दिशा में जुताई ना करें। इसके बाद जो है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो पानी बह करके आता है वो कुंडों में जो है वो रुकता है, जिसके चलते जो है हमारी मिट्टी जो है नहीं बह पाती है।
0: हाँ।
1: इसलिए जो है आप अंतिम जुताई हमेशा जो है
0: स्लोप में नहीं करें,
1: स्लोप में के साथ ना करें, स्लोप के विपरीत करें। दूसरा ये कर सकते हैं किसान भाई जो है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पट्टीदार खेती।
0: अच्छा।
1: पट्टीदार खेती का मतलब ये होता है कि जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी बहती है, तो आप जो है एक लाइन जो है इस तरह की फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को रोकती हो।
0: अच्छा।
1: और दूसरे लाइन में जो है ऐसी फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को नहीं रोकती है।
0: अच्छा।
1: जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लाइन मक्का लगा रहे हैं तो एक लाइन जो है आप मूंग लगाइए।
0: अच्छा।
1: तो मक्का यदि मिट्टी के बहाव को नहीं रोकेगा तो मूंग रोक देगा,
0: फिर दूसरे लाइन में
1: आप फिर दूसरे लाइन में फिर आप मक्का लगाइए, फिर उरद मूंग लगाइए। तो ऐसे कर इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है पट्टीदार खेती कहते हैं। तो इस तरह की खरीफ फसलों में भी ज्यादा ही हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है हमारी कमजोर होती है, मिट्टी बह जाती है।
0: जी जी।
1: तो ऐसे केसेस में जो है देखा जाता है कि यदि आप पट्टीदार खेती कर रहे हैं तो उससे हमारी जो है मिट्टी भी बचती है और पानी भी बचता है।
0: अच्छा,
1: हमारा
0: अच्छा।
1: इसके बाद जो है आप ये काम कर सकते हैं कि वेजिटेटिव जो है बंड बना सकते हैं, वेजिटेटिव बंड बना सकते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ पर ज़्यादा इरोजन हो रहा है वहाँ पर मेड़ों पे जो है आप जो है सजीव बंध जिसको कहते हैं, जैसे कि मूज की घास हो, मूज हो गया।
0: अच्छा।
1: या मतलब कि आपका और भी जैसे दीनानाथ घास हो गया, तो इस तरह की
0: ये सब रोकेंगे।
1: ये सब जो क्या करता है कि वो पानी को बहने नहीं देता है, मिट्टी को रोक देता है वहाँ पे। ये आप काम कर सकते हैं। ऐसे करके भी इसके अलावा भी जो है आप उसमें बंडिंग कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे कि यहाँ पर झारखंड में हमारे खेत जो हैं वो छोटे छोटे हैं, इसके पीछे कारण है। छोटे छोटे इसलिए हैं कि वो जितना स्लोप उसका कम रहेगा उतना ही मिट्टी का इरोजन कम होगा।
0: अच्छा।
1: मिट्टी का जो कटाव होता है, यदि मिट्टी का स्लोप बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से हम बंडिंग नहीं किए हुए हैं तो मिट्टी का कटाव ज्यादा
0: हो जाएगा।
1: इसीलिए खेत को यहाँ पे छोटे छोटे बनाया जाता है ताकि मतलब कि उसकी जो स्लोप की हमारी लंबाई है वो कम हो जाएगी और मिट्टी का कटाव जो है हमारा रुक जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से जो है हम उसमें मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। और इसके अलावा जल के संरक्षण करने के लिए जो है बहुत तरह की उपाय है। उसमें जो है जल का संरक्षण करने के लिए आप जो है तालाब का, यहाँ झारखंड में कंसेप्ट है कि तालाब का निर्माण,
0: डोभा का निर्माण करवा दीजिए,
1: डोभा का निर्माण करिए। जैसे कहा जाता है खेत का पानी खेत में, तो उसके पीछे कारण यही है कि जो आपका खेत का अंतिम सिरा है वहां पर आप डोभा का निर्माण कर दीजिए।
0: अच्छा।
1: डोभा जो है बहुत ज्यादा गहरा नहीं, मतलब कि 10 फीट गहरा और जो है 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा,
0: इतना काफी है,
1: इतना काफी है ताकि खेत का पानी जो है आपके उसमें जमा हो जाएगा
0: और इसके अंदर जाएगा।
1: हाँ, आज जो आप जब आप जरूरत पड़ेगी तो उससे जो है आप निकाल सकते,
0: निकाल भी सकते हैं बिल्कुल।
1: दूसरा उसका उपाय है कि आप तालाब का जब भी निर्माण करें तो वो जो है आप जैसे कि यहाँ की जमीन जो है ऊपर नीचे है, जैसे ऊपरी जमीन, मध्यम जमीन और नीचे की जमीन, तीन तरह की जमीन यहाँ पे है। तो यदि आप ऊपरी जमीन में आप तालाब बना रहे हैं तो ये देख करके बनाए तालाब की उसका जो है कैचमेंट एरिया कितना है।
0: अच्छा।
1: मतलब कैचमेंट एरिया से किसान इसको ऐसे समझे कि उसमें पानी आने का जो है
0: साधन कितना,
1: कितनी दूर से पानी उसमें आ सकता है।
0: अच्छा।
1: यदि पानी का आने का साधन वहां पे है तो जो है वहां तालाब का निर्माण करे।
0: अच्छा।
1: ताकि मतलब कि बारिश का पानी जब हो तो वो तालाब में आ जाए। ऐसी जगह तमाम हम लोग देखे हैं कि ऐसी जगह तालाब भी बन जाते हैं जहाँ पानी का कोई आगमन नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो है तालाब भर नहीं पाता,
0: हाँ, सूख जाता है।
1: हाँ, तो वो तालाब के निर्माण में एक और सावधानी रखनी है कि तालाब जब भी बनाए वो एक निश्चित लंबाई चौड़ाई और गहराई का रहे, जैसे कि मैंने 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा
0: जी,
1: और जो है 10 से 12 फीट गहरा हो, और उसकी जब खुदाई कराएं जेसीबी से या अपने किसान जो है अपने से भी उसकी खुदाई कराते हैं, तो उसकी जब भी खुदाई कराएं तो उसमें जो है उसकी जो मेड़ दे वो तीन तरफ से ही मेड़ दे, एक तरफ से उसको खुला रखे।
0: अच्छा।
1: ताकि उससे पानी आ सके। बहुत जगह देखा जाता है कि वो चारों तरफ से मेड़ दे दी जाती है,
0: इसके चलते जो है
1: वो जो है पानी आ नहीं पाता है तालाब में। तो किसान भाई को हम सलाह देंगे कि मैंने उसको मेड़ जो भी बनाए वो तीन तरफ से बनाए, और मिट्टी की जो कटिंग करेंगे उसको वो जो है मिट्टी कटिंग करने के 3 से 4 फीट बाद जो है मिट्टी को डाले।
0: अच्छा।
1: जैसे कि आप मिट्टी की कटाव यहाँ से कर रहे हैं तो उससे 3 फीट छोड़ करके मिट्टी को फेंके, जिसको जो है हम लोग बर्म कहते हैं, वो बर्म के ऊपर मिट्टी ना रहे।
0: अच्छा।
1: ताकि जैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद मिट्टी बहती है तो वो तालाब में सीधे चली जाती है।
0: अच्छा।
1: तो वो जो है जो बर्म जब रहेगा तो वहां पर मिट्टी जो है तालाब के अंदर जो है कम आएगी। पहले साल जब नया तालाब बनता है तो उसमें जो है मिट्टी ज्यादा आ जाती है।
0: हाँ, हाँ।
1: उसके पीछे कारण है कि जहां से वो खुदाई करता है लोग तालाब की, वहीं पर मिट्टी फेंक देता है, और बारिश हुई है तुरंत मिट्टी जो है बह करके तालाब।
0: अच्छा, बांध पर भी तो वृक्ष लगा सकते हैं।
1: हाँ, बांध में वृक्ष लगा सकते हैं, वो भी मिट्टी के आपको
0: कटाव
1: को रोकेगा। इसके अलावा जो भी तालाब बनाए तो उसको एक निश्चित स्लोप दे, जैसे कि 1:1 हम लोग कहते हैं या 1:2 कहते हैं, माने 1:1 या 1:2।
0: अच्छा।
1: जैसे कि 1 फीट गहरा करे,
0: हाँ,
1: तो 1 फीट जो है
0: चौड़ा
1: करे, फिर 1 फीट गहरा करे, फिर 1 फीट चौड़ा करे,
0: सीढ़ी नुमा
1: तालाब बनाना चाहिए। डायरेक्ट उसकी जो है खुदाई नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि स्लोप जब ज्यादा, जितना ज्यादा स्लोप रहेगा मिट्टी कटाव उतना कम होगा।
0: हाँ,
1: और सीधा बिल्कुल हम काटेंगे तो वो हमारे मिट्टी जो है कोलैप्स होने का, तालाब जो है वो
0: खतरा,
1: हाँ, भंसने का खतरा रहता है। तालाब में जो है भंस जाता है और मिट्टी भर जाता है, जिसको हम लोग सिल्टेशन कहते हैं। और सिल्टेशन हो जाएगा तो पता चले कि आपका जो है तालाब 12 फीट गहरा था, अब पहले ही साल में दूसरे साल में देखेंगे कि तालाब 6 फीट हो गया।
0: बिल्कुल।
1: इसके पीछे कारण यही होता है कि वो जो है तालाब में जो है मिट्टी बह करके चली जाती है और तालाब की गहराई जो कम हो जाती है, तो उसका जो है उसमें जो पानी का जो एरिया है वो भी कम हो जाता है हमारा।
0: तो ये तो कटाव की रोकने की बात हो गई हमारे किसान भाइयों के लिए। और अब प्रश्न उठता है कि जो इसकी जो उर्वरा शक्ति जो क्षीण हो रही है, और लोग बोलते हैं कि रासायनिक खातों का अंधाधुंध प्रयोग करें, अगर इसका प्रयोग ना करें तो खेती भी अभी की स्थिति में थोड़ी लचर स्थिति में हो जाएगी, आखिर क्या करें किसान भाई?
1: देखिए, आज के समय ऐसा हो गया है कि मिट्टी जो है हमारे खेत का जो भी उर्वरा शक्ति है वो टोटली जो है डिपेंड हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर पे
0: जी।
1: वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, साथ साथ में जो है जो भी उसका भोजन कर रहा है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसलिए जो है हम लोग जो है अब सलाह दे रहे हैं किसानों को कि आप जो है जो भी आपका रासायनिक खाद है उसका जो है उपयोग कम से कम करें और अधिक से अधिक जो है आप प्राकृतिक खाद का उपयोग करें
0: तो ज्यादा
1: या जो है कंपोस्ट का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि किसान कहते हैं कि हमारे पास गोबर की कमी है, कंपोस्ट नहीं है, तो ऐसे तमाम तरह आज के समय में आ गया है, पहले से ही चला रहा था प्राकृतिक खाद जो है
0: बिल्कुल।
1: जो आपको 10 केजी गाय के गोबर से और 5 लीटर गोमूत्र से आपका तैयार किया जा सकता है एक एकड़ के लिए
0: जी।
1: तो यदि उसको आप करते हैं तो उसकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है हमारी बढ़ती है। एक्चुअली है क्या ना कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो है जो हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे
0: तो
1: हैं उससे नष्ट हो गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि खेत में केंचुआ आजकल नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो केंचुआ तो आपको बड़ा है वो दिख जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे तमाम ऐसे बैक्टीरिया है
0: हाँ,
1: जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वही मिट्टी को जो है पोषक तत्व देते हैं और जिसके चलते पौधों को मिलता
0: विकास होता है।
1: तो वो जो है बैक्टीरिया मर गए हैं और बैक्टीरिया तभी आ सकते हैं जब आप प्राकृतिक खाद दें
0: जी। और ऐसे भी तो अगर अनुपात मिला करके देने की बात आती है कि कुछ आप रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आप प्राकृतिक जो केचुआ वगैरह उसका भी उपयोग करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जो है जैसे कि हम लोग एकाएक बंद करने की बात नहीं करते हैं कि रासायनिक खाद को आप एकाएक बंद कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप यदि 1.5 केजी यूरिया प्रति कट्ठा आप दे रहे हैं तो उसको जो है आप जो है 1 केजी कर दीजिए या 1.25 केजी कर दीजिए, फिर इसके अगले साल फिर उसको 200-250 ग्राम और कम कर दीजिए, फिर उसके अगले साल और कम कर दीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे जो है आप एक समय 3 साल के बाद हम लोगों ने ऐसा देखा है और खुद किया है अपने फार्मों में किया है, किसानों के यहाँ किया है
0: जी जी,
1: कि आप 3 से 4 साल के बाद आपको जो है रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा।
1: और जो है मिट्टी जो है अपने आप जो है उसके अंदर उर्वरा शक्ति जो है उसके अंदर बैक्टीरिया इतने पनप जाएंगे कि फिर जो है आपको किसी भी तरह के हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस पे बहुत ज्यादा मैंने फोकस है कि आप जो है प्राकृतिक खेती करिए। इस प्राकृतिक खेती में क्या है कि आप जो किसी भी तरह का मैंने बहुत ज्यादा आपके गोबर की खाद या किसी तरह के मैंने खाद की जरूरत नहीं है। 10 केजी से 1 एकड़ की आप खाद का काम हो सकता है 10 केजी गोबर से ही, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।
0: लेकिन तकनीकियां अपना
1: हाँ किसान इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने कंपोस्ट से खेती करेंगे या प्रकृति खेती करेंगे तो ज़्यादा मतलब कि गोबर की जरूरत पड़ेगी, उतना हमारे पास जानवर नहीं है। कैसी बात नहीं, कम से कम गोबर में और गोमूत्र में जो है आपका खाद उससे बन जाएगा। उसमें बहुत तरह की प्रोसेस होती
0: अच्छा,
1: है
0: अच्छा।
1: हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में उसको बना करके दिखाते हैं किसानों को और किसान के खेतों में भी हम लोग इसको करते हैं।
0: अब बात उठता है कि हमारे ग्रामीण बंधु किस प्रकार से जल का संरक्षण करें, तो कई तकनीकियां खेतों खलिहानों में ऐसे उतारी गई हैं जिनमें आपका बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, टपक सिंचाई है, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध हो पाता है?
1: ये बहुत कारगर है। ये जो है टपक सिंचाई जो है झारखंड सरकार इस पे जो है 90% सब्सिडी दे रही है और याद से नहीं कम से कम जो है 12-13 साल से जो है इस पे सब्सिडी आ रहा है और किसान इसको जो है अपने खेत में जो है इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। वो आप कृषि विभाग में जाएंगे, वहाँ आत्मा एक विभाग है, कृषि
0: अच्छा,
1: विभाग का ही पार्ट एक है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से जो है आपको बूंद बूंद सिंचाई का टपक सिंचाई का जो है आपको मिल जाएगा। एक फार्म होता है उसको भरना होता है।
2: अभी हमारी बहनें सुन रही थी वार्ता, भेंट वार्ता सुन रही थी, मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण इस पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे और बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। जाने से पहले बहनों एक नज़र डालेंगे आज के मौसम के मिजाज पे। तो आज डाल्टनगंज शहर का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी जानकारी के साथ बहनों अब हमें दीजिए इजाज़त, कार्यक्रम ग्रामीण सभा से नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें।

0: रखें। पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें। हमेशा मच्छरदानी लगा कर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर संसद परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। राज्य में कथित शराब घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी कर 4 अगस्त को किया तलब। देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का मंत्रियों ने किया उद्घाटन। पहले दिन कल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के बाबा नगरी पहुंचने की संभावना। और रांची में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा एयरफोर्स और श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी के बीच डुरंड कप का दूसरा मुकाबला। फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। संसद परिसर में आज झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मांग की कि कांग्रेस को राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए।
7: झारखंड के अंदर जेपीएससी घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ और आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। उत्पात सिपाही दौड़ में हमारे 16 युवा मारे गए, कौन न्याय देगा? क्यों नहीं उनको सरकारी नौकरी देते उनके परिवार को? एक हाथ में सुरमा और एक में वो, हम तो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे।
6: झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत 2,20,00,000 के इनामी माओवादी कमांडर मिस्र बेसरा को धनबाद से गिरफ्तार किया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में 15,00,000 का इनामी मेहनत और एरिया कमांडर गौरव को भी दबोचा गया है। इनके पास से 3 AK-47 राइफल और 288 कारतूस मिले हैं।
8: झारखंड पुलिस के लिए स्मरणीय दिवस है, अच्छी उपलब्धि हुई है। पिछले करीब 6 माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर्स और सरेंडर करवाए हैं, इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगी IGFCF, IGCRPF, IGOPS और हमारे SSP धनबाद और SP गिरिडीह, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज आज हो चुकी है।
6: चतरा में आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के IG शैलेंद्र कुमार ने रामगढ़ और चतरा पुलिस के साथ अहम समीक्षा बैठक की। उन्होंने दोनों जिलों की कानून व्यवस्था, उग्रवाद विरोधी अभियानों और सीमावर्ती सुरक्षा की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। राज्य में कथित शराब घोटाला और उत्पाद नीति में अनियमितताओं को लेकर एसीबी की कार्रवाई तेज हो गई है। एसीबी ने टेंडर प्रक्रियाओं और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में राज्य के 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी किया है। एसीबी के अनुसार 4 अगस्त को तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह और JSBCL के तत्कालीन महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राज्य भर में आज संत गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता महापर्व अभियान की शुरुआत की गई है। इस राज्यव्यापी अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बोकारो सहित विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
9: जहां जुनून मिलेगा इतिहास से, वहां लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
10: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 टीम में इस बार।
9: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
10: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
9: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
10: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए रांची, जमशेदपुर और देवघर में प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने जा रही है। इन कैफेटेरिया में मोटे अनाज यानी श्री अन्न से बने स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन उपलब्ध होंगे। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि प्रत्येक प्रीमियम कैफेटेरिया के लिए सरकार पहले वर्ष 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी।
11: पूरे राज्य में मिलेट मिशन के बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ड्राइव भी चलाया था जुलाई में। अभी हम लोगों ने उसमें करीब 22,000 किसानों को एनरोल कराया है। उद्देश्य यही है कि मिलेट्स का प्रोडक्शन में झारखंड जो है पूरे देश का अग्रणी राज्य बने। इसमें हम लोग मिलेट के प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं ताकि किसानों को पैडी फसल के वैकल्पिक फसल के रूप में मिलेट्स की खेती कर सके।
6: रांची के लोअर बाजार थाना में आयोजित जन शिकायत समाधान शिविर में आज वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। SSP ने अधिकारियों को पीड़ितों की जमीन विवाद, धोखाधड़ी और मारपीट जैसी शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
12: चौथा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है और हम लोग एक डेली डेटा शीट भी बना रहे हैं कि कितने शिकायत हम लोग ऑन स्पॉट समाधान कर पा रहे हैं, कितने लंबित हैं, कि बहुत सारे फिर FIR इत्यादि भी दर्ज हो रहा है। 1-2 महीने का पीरियड बीत जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है और पूर्व में जो लोगों ने शिकायत दी उनका समाधान हुआ या नहीं हुआ।
6: सावन का पवित्र माह कल से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही देवघर समेत राज्य के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देवघर में पहले दिन कल करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इससे पहले आज मंत्री सुदिव्य कुमार और दीपिका पांडे सिंह ने दुम्मा प्रवेश द्वार पर दीप प्रज्वलित कर देवघर के राजकीय श्रावणी मेले का भव्य उद्घाटन किया। उधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में भी आज राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का पारंपरिक और विधि विधान से शुभारंभ हो गया। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर, आयुक्त संजय कुमार और उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इधर रांची में भी सावन माह के पावन अवसर पर विशेष तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रांची की मेयर रोशनी खलखो ने आज ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का औचक निरीक्षण किया।
13: हर साल जो तैयारी होती है उससे ज्यादा हम लोग तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुगणों को सुविधाएं हम लोग मुहैया करा सके। जहां पर लाइटें नया बदलने की आवश्यकता है उसे नया बदलने के लिए भी ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है। इसके साथ ही बाबा की नगरी को पूरा दुल्हन की तरह सजाना है।
6: 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के रांची चरण में आज दूसरा मुकाबला इंडियन एयरफोर्स एफटी और श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी के बीच अब से थोड़ी ही देर बाद बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू होगा। इस रोमांचक मैच के लिए स्थानीय दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर संसद परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। राज्य में कथित शराब घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी कर 4 अगस्त को किया तलब। देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का मंत्रियों ने किया उद्घाटन। पहले दिन कल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के बाबा नगरी पहुंचने की संभावना। और रांची में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा एयरफोर्स और श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी के बीच डूरंड कप का दूसरा मुकाबला। फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
14: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले के अनुसूचित जाति जनजातीय उद्यमियों को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रयास तेज कर

0: प्रोग्राम है, इसके तहत हम लोग चाहते हैं कि जन जन तक एससी एसटी उद्यमी तक पहुंचे और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से है, जिसमें उनको जागरूकता से लेकर के जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसमें 4% का रिजर्वेशन है उनका हरेक सरकारी निविदा में पार्टिसिपेट करें निविदा में, क्योंकि 4% जो हमारे एससी एसटी उद्यमी गण है उनका पूरा नहीं हो पाता है हमारे सीपीएससीज में, तो उसके लिए खास ये प्रोग्राम रखी गई है।
1: समावेशी शिक्षा के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना एवं एलिम्को ने पाकुड़ जिले के 6 प्रखंडों में संयुक्त रूप से शिविर लगाकर दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरण का वितरण किया। इस पर बात की एलिम्को के डॉक्टर ज्ञानेंदु कुमार सिंह ने।
2: सर, शिक्षा अभियान के तहत पिछले साल हम लोग असेसमेंट किए थे, तो उसमें बच्चों का जो सहायक यंत्र उपकरण एड सप्लायंस है, जो दिव्यांग बच्चे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सहायक यंत्र उपकरण यथा व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, मोटराइज बैटरी चालित ट्राई साइकिल, क्रचेज, ब्रेल किट, श्रवण यंत्र, मानसिक मंद बच्चों के लिए TLM किट, तो ये सब सारे उपकरण वितरित करके जो चिन्हित किए गए थे पिछले साल, आज वितरण कार्यक्रम शिविर लगा किया जा रहा है।
1: झारखंड सरकार द्वारा लघु खनिजों का चालान विपत्र के साथ उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से परेशान संवेदकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर राहत दिलाने की मांग की है। इस पर बात की संवेदक संघ के रितेश कुमार ने।
3: जो भी है हमारे यहाँ का एसोसिएशन, हम लोग डीसी मैम से आज मिले हैं, जिसमें 27 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आया कैबिनेट का, जिसमें मैंडेटरी क्या है कि जो भी हम लोग माइनर मिडलर यूज करेंगे उसका चालान हम लोग को डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा। तो इसमें काफ़ी माइनर मिनरल ऐसा है जो मार्केट में अवेलेबल तो है लेकिन चालान के साथ अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं और साथ में मटेरियल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काम पूरा बाधित है। कंस्ट्रक्शन का जो भी डेवलपमेंट वर्क है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है।
1: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ट्रेसलेस मतदाताओं का पता लगाने एवं उनका गणना प्रपत्र भरवा कर जमा लेने और डिजिटाइजेशन को लेकर पाकुड़ में 3 दिनों का विशेष शिविर लगाया गया। इस पर बात की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने।
4: ASDD लिस्ट जो है हमारा उसको फाइनल करना था, वो तो जहाँ थे मतदान केंद्रों में कुछ हमारे मतदाता है जो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं BLO के द्वारा, उसी के रिगार्डिंग बैठक सीजे BLO ग्रुप को भी बोला गया कि अगर भी ऐसे मतदाता ट्रेस होते हैं तो उनका फॉर्म हम लोग जल्दी भरवा दें। और चूंकि कुछ भारी संख्या में मतदाता 100 के राउंड मिले हैं जिनके बारे में BLO 2 को भी जानकारी नहीं दी, तो एक बार हम लोग लास्ट प्रयास के तहत 2-3 दिन का कैंप जो है इस बूथ के विभिन्न एरिया में लगाएंगे ताकि अगर एक भी हो तो वो छूटे ली मिले।
1: पाकुड़ शहरी क्षेत्र में बीते 15 दिनों से शहरी जलापूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
5: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आप लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग सुनने वाले तमाम दोस्तों को परिणीता का नमस्कार। दोस्तों आइए आज के इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं एक है फिल्म सिलसिला के कुछ

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक रंग कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये, और आज इस कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं एक ही फिल्म सिलसिला के कुछ गीतों को। आइए अगला गीत सुनते हैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ में।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में दोस्तों आज आपने सुना है कि फिल्म सिलसिला के कुछ गीतों को। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और जावेद अख्तर, संगीतकार शिव हरि, गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन और साथी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज आइए हम सुनते हैं रांची की डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय की ली गई एक भेंटवार्ता। विषय है अस्थमा, कारण और उपचार। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में अस्थमा हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बातचीत करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे, कोविड के बाद उनके अस्थमा के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
1: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम

0: अपने आप को बचाव किस प्रकार करें?
1: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूँ कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीजों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं न थी।
0: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
1: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।
0: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
1: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है, कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
0: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
1: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, कई तरह के मूंगफली, बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफ़ी शौकीन हैं और दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं। ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
0: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेने पड़ेगी, तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
1: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर से डरे नहीं। इन्हेलर केवल एक दवा पहुँचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है। तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदि होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे, तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपके इन्हेलर हट सकती या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर नाम से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा हो तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए और एक इन्हेलर खत्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्या कारण डॉक्टर साहब के छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हंसता रहता है, हाँफता रहता है, छींकता रहता है।
1: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण कुछ भी बोलिए वायु प्रदूषण है। तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है, कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है। तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब बीमारियों से हम लोग बच्चों को बचा सकेंगे।
0: और दूसरी बात कि हमारा खान पान भी काफ़ी बिगड़ गया है, बाहर की चीज़ें फास्ट फूड का सेवन हम बहुत करने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को?
1: कभी कभी मनोरंजन के लिए बाहर का खाना स्वाद चखना अच्छी बात है, जो 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने घरों पर भरोसा रखिए, अपने घरों के रसोई पर भरोसा रखिए और कोशिश करिए उस घर का खाना जितना ज़्यादा खाने का, तो आपको इस तरह की कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखेगी।
0: घर का बना हुआ खाना ही खाइए, यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ, आज आपने अस्थमा पर बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज के दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो, कल एक फिर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अस्थमा कारण और उपचार, इस विषय पर आपने अभी सुना रांची के डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय से ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता, इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। इसी के साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ही डाल्टनगंज केंद्र है हमारा अगला कार्यक्रम, बस थोड़ी ही देर में।

की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक है पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष की टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा, हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे, हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13 के 3 में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ. अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ. ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, बीजेद की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ. एम. थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ. अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी।
विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर

0: किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य जी ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगा हर्ट्ज पर। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं आरजू इस फिल्म के गीत से। आवाजें उदित नारायण, अनु मलिक और साथियों की है।

आज का अर्जुन इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और शबीर कुमार की, अनजान के बोल थे, संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। अब आइए सुनते हैं आरडी वर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, फिल्म का नाम है अलग।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, सुविंदर सिंह, जसविंदर नरूला और अनमोल मल्लिक की आवाज़ों में फिल्म बादल का ये गीत। समीर के बोल हैं, संगीत दिया है अनु मल्लिक ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगी हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। अब समाचार होंगे।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
4: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
3: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
4: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
3: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
5: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
3: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
6: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
7: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
3: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
8: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
9: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
10: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
11: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
3: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है, जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तिजामात हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज फराहम करने से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया है। इसने कौमी गीत की तौहीन को जुर्म करार दिया है। ओडिशा में सैलाब के सबब 4 अमवात और तकरीबन 4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक दफ्तर ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन पर की गई कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया है। इसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। इस कानून में 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार ठहराए गए अफराद की इमलाक को जब्त किए जाने समेत मुख्तलिफ अहम इल्तिजामात हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल तलबा और नौजवानों की फलाह बहबूद के तहफ्फुज की खातिर हुकूमत के अज़्म का इयादा करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के इल्जामात का जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत ने बार बार ये वजाहत की है कि कोई गोली नहीं चली और सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इससे कबल बहस में हिस्सा

0: देते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि नीट मामले पर तलबा का एहतजाज तशद्दुद या नफरत नहीं था बल्कि नौजवानों का एक शदीद इजहार था और सभी सियासी पार्टियों को इसका एहतराम करना चाहिए। राज्यसभा ने कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। ये बिल कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। मुजफ्फिसा कानून कौमी तराने जनगणमन की तरह वंदे मातरम को कानूनी तहफ्फुज फराहम करेगा। इसकी खिलाफवर्जी पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस बिल को मंजूर किए जाने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 जबकि राज्यसभा में कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया। दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में पैदायश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। ऐवान जेरी ने एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक कानून का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत कार में भी पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास 2026 के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक तौसी कर दी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर ऑपोजिशन के शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी और इस वजह से दोनों ऐवानों में वक्फाए सवालात नहीं हो सका। कल लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाना है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला पर आज लोकसभा में किए गए तबसरे पर एसपी सिंह बघेल रामदास आठोले और हर्ष मल्होत्रा समेत कई मरकजी वजीरों ने तनकीद की है। पार्लियामेंट के अहाते में आकाशवाणी से खसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर की जानिब से ऐवान में इस्तेमाल की गई जबान पार्लियामानी कार्रवाई के लिहाज से गैर मुनासिब थी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क तकरीबन 6 दहाइयों के तशद्दुद के बाद बाएं बाजू की उस इंतहा पसंदी से आजाद हो गया है जिसे कभी दाखिली सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा तसव्वुर किया जाता था। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने बताया कि ये हुसूलियाबी बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से निमटने के लिए कौमी पॉलिसी और एक्शन प्लान के मजबूत नफाज और मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल पर मबनी कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सकी। जनाब राय ने ऐवान को बताया कि फिलहाल कोई भी जिला बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा करार नहीं दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे ने हालिया बरसों में हुकूमती इकदामात और सनती इस्लाहात की बदौलत काबिले जिक्र तब्दीली का मुशाहिदा किया है। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने कहा कि मुल्क बतदरीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर उभर रहा है। जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड ईडीएफ हुकूमत हिंद की एक ऐसी ही पहल है जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट से तहरीक पाने वाली इख्तरा को फरोग देना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के ज्यादातर हिस्से में लगातार सैलाब और नदियों में पानी की कसीर मकदार ने रियासत को संगीन इंसानी बहरान में मुब्तला कर दिया है। इसके नतीजे में 4 लोगों की मौत हो गई है और हजारों अफराद बेसहारा हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि 304 ग्राम पंचायतों के तकरीबन 3,80,000 अफराद मुतासर हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इंतजामिया ने तेजी से बदलती सैलाबी सूरत हाल और उथल पुथल भरे हालात के दरमियान राहत और बचाव कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। सतह आब में हुए इजाफे की वजह से बेतरानी नदी केवंझर जाजपुर और भद्रक जिलों के अपने तास में कहर बरपा कर रही है जबकि भद्रक जाजपुर और बालासोर में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक बनी हुई है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने नवापाड़ा कालाहांडी नबरंगपुर और कोरापुट जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिससे सैलाबी सूरत हाल के मजीद बिगड़ने के खदशात बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में गुज़श्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर है। बस्तर डिवीजन, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी समेत मुख्तलिफ जिलों में बड़ी नदियों में तुगयानी

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती।

बहुत लोग साथ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना? किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।
1: Tell Molly, jump in.

0: नजर आए।
1: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
0: प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा।

भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

0: बॉम्बे, यह बॉम्बे, यह बॉम्बे मेरी जान।
1: ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान।
0: ए दिल है आसा जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, यह बॉम्बे मेरी जान।
2: जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक, यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे, लोग हंसते थे।

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: जो कोलारा की जरूर लूं बाबा ने मुझे केरे मार मार कर दे पापा
1: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे
0: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खास तौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: बोला बात नहीं है डर की, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर बाय।
2: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरुदत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
3: जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में

0: ना देखा।
1: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमति फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
2: आज दहिया का याद आवत है,
3: तबीयत नरम है आज।
2: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
3: नींद नहीं आती रात भर।
2: नींद नहीं आवत है पर का है? रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है?
3: दुखता उखता नहीं, कस मसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
2: ओ ये तो नवा रोग लगत है, सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
3: सोचना कैसा, कुछ इलाज करू ना हमारा।
2: ठहरो, पहले ये बताओ सोवत कैसी हो, चित पट के करवट
3: कैसे? ऐसे
2: बराबर लेटो,
3: भाता है ना ऐसा लेटना।
2: नींद ना आए तो क्या फायदा।
3: अच्छा ये कैसा?
2: दुई कौड़ी का।
3: तो फिर कैसे?
2: इधर घूमो करवट,
3: फल नहीं पड़ता, तुम ही घुमा लो ना।
2: गोबर गणेश कहीं की।
1: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी।
4: मिस्टर जो डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता?
2: उधर टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा लो और बेडरूम में भी।
4: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
2: छोकरी? तुम्हें टेलीफोन छोकरी के हाथ में था?
4: यस।
2: ओ गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहे को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना वो किसी में नहीं। डार्लिंग, तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता है।
4: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काहे को उसका बात करता है? डोंट फॉरगेट तुम हमारा पेइंग गेस्ट है।
5: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी, बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
2: जाएगा। राइट राइट।
4: मैं सूजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
5: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
2: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
4: यू शट अप। सूजन, तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला, तुम क्या बोला?
2: मैं बोला कि तुम सिस्टर कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है, मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
6: तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी। हम तुम जिसे कहता है शादी, रूनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
7: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

अभी आप विविध भारती का प्रसारण सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म के गीत से। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

अगला गाना हमने लिया है रास्ते प्यार के इस फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की है, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राजफिल्म का गीत। राजफिल्म का गीत अभी आपने सुना, अभिजीत की आवाज़ में समीर के बोल थे, नदीम श्रवण का बोल संगीत था। अब आइए सुनते हैं सड़क, इस फिल्म से अनुराधा पौडवाल और अभिजीत की आवाज़ों में सुरेंद्र साथी के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत।

अब आइए सुनते हैं आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में समीर की रचना। आवाजें अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की है। फिल्म का नाम है बागी।

शिकारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोल थे, संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव ने। अब आइए सुनते हैं दीवाना, इस फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और जसविंदर नरूला की आवाज़ों में। समीर के बोल थे, संगीत दिया था अनु मलिक ने। अब आइए।

मोहम्मद अजीज और साधना सरगम के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा।

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: sealing semi-final berths. Five pugilists, including Arundhati Chaudhary in women's 70 kilogram, Sakshi Chaudhary in women's 51 kilogram, Sachin Sehwaj in men's 60 kilogram, Ankush Panghal in men's 80 kilogram semi-finals, and Narinder Barwal in men's 90 kilo plus kilogram categories registered victories today. India's overall medal tally currently stands at 12, comprising 2 gold, 7 silver and 3 bronze. And that's the end of this news bulletin.
1: अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। कल सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।